FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून 2026। और इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 5:56:47 और अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा। हमारी आज की प्रसारण सभा में आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का स्वागत है।

0: एफएमएन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं श्रोताओ, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी
1: दिल्ली। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलरमरो मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए

0: भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम एंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं श्रोताओं, और आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में सबसे पहले सुनिए माँ भारती की ये

श्रोताओ, मां भारती की इस वंदना के बाद लीजिए सुनिए लता मंगेशकर का गाया हुआ ये भजन भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में आज इतना ही। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है FM 100.2 MHz पर। सुबह के 6:30 हुए हैं और आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है चिंतन। आज के चिंतन का विषय है सकारात्मक सोच और चिंतक हैं डॉक्टर सुरेश सम्राट। तो आइए सुनते हैं चिंतन।
1: सकारात्मक सोच सदैव रचनात्मक दिशा का अनुगामी होता है। ऐसा सोच रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति में अच्छे कार्यों के प्रति सम्मान और प्रसन्नता का भाव रहता है। स्वार्थ और दूसरों के अहित की बात तो उसे स्पर्श तक नहीं कर पाती। अनुचित समझौतों से वह दूर ही रहता है। किसी की समृद्धि, सफलता या विजय उसे उल्लसित ही करती है। जलन, ईर्ष्या जैसी बुराइयाँ उसमें किसी दूसरे के उत्कर्ष को देखकर नहीं उपजती, वरन वह उसे भी सद्भाव और प्रसन्नता के साथ ग्रहण करता है। सच कहा जाए तो सकारात्मक सोच मानवीय दृष्टिकोण के सबसे पावन स्वरूप का जनक होता है। सकारात्मक सोच और चिंतन वाला मनुष्य कर्मयोगी तो होता ही है। वह अपने अमूल्य समय, अपने महत्वपूर्ण प्रयत्न और अपनी सामर्थ्य का उपयोग दूसरों के हित के लिए करने में कोई संकोच नहीं करता। किसी की उचित अपेक्षा से उसे कष्ट का नहीं, आनंद का अनुभव होता है। दूसरों के कष्टों और समस्याओं को समझने, उन्हें सुलझाने में उसे खुशी मिलती है। उनके सुख दुख का भागीदार बनना, हताशा में उन्हें प्रोत्साहित करना और विपरीत परिस्थितियों में उन्हें धैर्य का संबल प्रदान करना वह अपना निस्वार्थ दायित्व समझता है। दूसरे की नाकामयाबी पर वह हंसता नहीं, असफल को वह ही नहीं समझता, बल्कि और गहराई से समझने की कोशिश करके वह उसे वास्तविकता से साक्षात्कार कराने के लिए तत्पर रहता है। कोई भी मनुष्य जिसकी सोच सकारात्मक होती है, स्वयं अपने को महान या बड़ा समझने का भ्रम कभी नहीं पालता। अहम का अहंकार कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मेरा ही विचार सही है, इस प्रकार के भ्रम और दुराग्रह उसके मन में कभी नहीं आते। अपनी भूल को स्वीकार करने में उसे संकोच नहीं होता। यदि उसका मत या विचार सही निकलता है तो वह इसके लिए न तो स्वयं की तारीफ करता है और न ही तारीफ सुनने की अपेक्षा रखता है। व्यवहारिक जीवन में सकारात्मक सोच अपनाने के लिए कोई विशेष प्रयास करने पड़ते होंगे, ऐसी बात नहीं है। यह सब तो स्वस्थ चित्त और चिंतन स्वतः ही यंत्र की भांति संचालित करता रहता है। उसमें स्वार्थी होने या श्रेष्ठता की ग्रंथि पनपने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। ऐसी स्थिति में उसमें संवेदना और दया भाव जैसे गुणों का आ जाना एक स्वाभाविक क्रिया के रूप में ही संभव हो जाता है। दूसरे के दुर्व्यवहार के जवाब में भी भलाई का व्यवहार करने की उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। वह असहमति से क्रोधित नहीं होता, बल्कि उस पर विचार करना ही ज़्यादा पसंद करता है। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को लोकप्रियता अपने आप ही मिल जाती है, क्योंकि सामाजिक होकर जीना उसे अच्छा लगता है। लोगों से मिलने वाले अपनत्व के कारण उसका आत्मसंतोष और बढ़ जाता है। अधिक से अधिक लोगों से मिलने, उन्हें समझने और अपनी सेवाएं देने में वह सोच विचार नहीं करता। ऐसा व्यक्ति आत्म प्रवंचना जैसी सर्वव्यापी बुराई से भी दूर रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सकारात्मक सोच व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने वाला सबसे महत्वपूर्ण आधार है। यदि हम अपने सकारात्मक सोच पर दृढ़ता के साथ अडिग रहेंगे तो कुंठा और असंतोष जैसी प्रवृत्तियां हमें छू तक नहीं पाएंगी। वस्तुतः सकारात्मक सोच स्वयं के जीवन को तो स्फूर्त बनाए ही रखता है, दूसरों के जीवन को भी सहज सरस बनाने की प्रेरणा देता रहता है।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आज के चिंतन का विषय था सकारात्मक सोच और चिंतक थे डॉक्टर सुरेश सम्राट। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। आज के कलाकार हैं ए हरिहरन। तो आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस का संगीतमय प्रसारण।

जगत के समस्त जीव मनह रोग से ग्रस्त हैं। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, सभी जीव हर्ष, विषाद, भय, प्रीति और वियोग के दुख से दुखी हैं। ये रोग सबको व्याप्त हैं, किंतु इनकी प्रतीति विरलों को ही होती है। विषय वासना के रूप में यह रोग मुनियों के हृदय में भी उपजते हैं। इनके निदान के लिए एकमात्र संजीवनी जड़ी है भक्ति, किंतु इस औषधि के लिए आवश्यकता होती है एक साधन की, और वो साधन है श्रद्धा युक्त सुबुद्धि। इस उपचार से ये रोग मिट जाएं तो मिट जाएं, अन्यथा करोड़ों उपाय करके भी मनह रोगों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। मन के स्वस्थ होने से आत्मिक बल बढ़ता है और उसके फलस्वरूप माया मोह से विराग उत्पन्न होता है, जिसकी परिणति प्रभु प्रेम में होती है।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। आज के कलाकार थे ए हरिहरन। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM 100.2 MHz पर। आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि सामायिकी। कृषि सामायिकी में बैगन की फसल में तना एवं फल छेदक कीट का नियंत्रण विषय पर आपको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह तोमर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि सामायिकी।
1: हमारे किसान भाई बैगन की फसल का रोपण करते हैं और रोपण के 20 दिन बाद या महीने भर के भीतर जब फसल अपनी वृद्धि काल पर होती है और फसल के शुरुआत में जो ऊपर वाला सिरा होता है पौधे का, उसमें इस कीट का प्रकोप इसके पतंगों के द्वारा अंडे दे दिए जाते हैं और इसके पतंगे जो है पत्तियों की निचली सतह या पुरोहों के ऊपरी हिस्से पर अंडे दे देती है और उस अंडों से जो लार्वी निकलती हैं, जो इल्ली निकलती हैं, वो वहीं पर छिद्र करके और तने के अंदर घुस जाती है और तने के अंदर घुस के तने के अंदर वाले हिस्से को, बीच वाले हिस्से को इसके द्वारा काट लिया जाता है और जब बीच वाला हिस्सा तने का प्रभावित हो जाता है तो फिर वहीं से वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है और पौधे का ऊपरी हिस्सा मुरझा के नीचे की तरफ झुक जाता है और उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं और सफेद भूरे भूरे कलर की हो जाती हैं, जिससे इस कीट के प्रकोप को आसानी से खेत में पहचाना जा सकता है। बैगन के ऊपरी वाला हिस्सा तने से मुरझा जाता है, लटका हुआ खेत में दिखता है और जब फसल पर फल का आगमन होता है, फूल के बाद जब फल लगता है तो इसी प्रकार के लक्षण जो है फल बनने की शुरुआत में ही इसके कीट की इल्लियां जो है उसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं और धीरे धीरे फल को अंदर ही अंदर खाती रहती हैं और बाहर वाले हिस्से को इसकी विष्ठा के द्वारा पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है, जिससे किसान भाइयों को शुरुआत की अवस्था में इसके लक्षण नहीं दिखाई देते और उसके द्वारा किया हुआ छेद नहीं दिखाई देता। बाद में जब अंदर ही बैगन के पूरा फल खा लिया जाता है कीड़ों के द्वारा, इल्लियों के द्वारा, तो इसके लक्षण बाद में जो है प्रकट होते हैं और फिर जो है इसके द्वारा बैगन में छेद दिखाई देता है, बाहर निकलती है जब ये, तब इसका छेद समझ में आता है और अंदर ही अंदर पूरे पौधे पूरे फल को काला कर देती है और उसके अंदर वाले हिस्से को खा लेती है, जिससे हमारे किसान भाइयों को काफी क्षति होती है। किसान भाई खेत में जब भ्रमण करें और उनको कहीं भी इस प्रकार के लक्षण अगर दिखते हैं, जो मुरझाया हुआ हिस्सा है, जो झुका हुआ हिस्सा है, जहाँ से वो झुका है वहाँ से उसको तोड़ लें और इस प्रकार के लक्षण जो आते हैं उन उतने पौधों को शुरुआत की अवस्था में अगर मान लें 2-5% पौधों में ये नुकसान है, क्षति हो चुकी है, तो उनको चुन चुन कर उखाड़ कर नष्ट कर दें या तो जमीन में गाड़ दें, जला दें, खत्म कर दें, जिससे वो कीट का प्रकोप जो है दूसरे पौधों पर न फैलने पाए। और उसी तरह पे सावधानी के तौर पे किसी भी एक जैविक कीटनाशक का उपयोग किसान भाइयों के द्वारा किया जा सकता है, जिससे वो कीड़े का प्रकोप जो है खेत में फैल लेगा नहीं। जैसे नीम तेल का उपयोग किसान भाइयों के द्वारा किया जा सकता है, नीम तेल 5 ml दवा का 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पूरे खेत पे 400-500 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करें और पूरे खेत में समान तरीके से छिड़काव कर दें, तो उससे क्या होता है नीम तेल की वजह से दूर भागते हैं। फिर रासायनिक दवाओं के बारे में थोड़ी सी हमको सावधानी बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि रासायनिक दवाएं हैं जहरीली होती हैं और उनका प्रभाव खेत में उसके साथ साथ छिड़काव करने वाले पे, उसके साथ साथ जो उसका उपयोग करते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हानिकारक और जहरीली दवाएं, रासायनिक दवाएं जो होती हैं, उनका काफ़ी सावधानी पूर्वक और काफ़ी जागरूकता पूर्वक उपयोग इनका अगर किया जाता है तो ये काफ़ी प्रभावी दवाएं हैं। जैसे रासायनिक दवाओं में बैगन की फसल पर हमारे किसान भाइयों के द्वारा स्पाइनोसेट नाम की एक दवा आती है, जो जैविक की श्रेणी में इसको रखा गया है परंतु रासायनिक दवा है, तो स्पाइनोसेट दवा का 250 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट या 250 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर की मान से इसका छिड़काव फसल पर काल में किया जा सकता है। इसके साथ ही इमामेक्टिन नामक एक दवा आती है, इमामेक्टिन बेंजोइट जिसको बोलते हैं, एक स्पाइनोसेट के साथ ही इंडोक्साकार नामक एक दवा आती है, इसका भी उपयोग, तो ये तीनों ही नई दवाएं हैं, इनका उपयोग हमारे किसान भाइयों के द्वारा खेत में छिड़काव के तौर पर इनका यूज किया जा सकता है। छिड़काव में नेफसेक्स या हैंड स्प्रेयर या

पर स्प्रेयर किसी भी माध्यम से इन दवाओं को खेत में समान रूप से तरल दवाओं को छिड़काव किया जा सकता है। काफी शीघ्र जो है इस प्रकार के प्रकोप से हमारे किसान भाइयों को आसानी होती है, बचा जा सकता है। हाँ, दवाओं के प्रयोग में हमारे किसान भाइयों को एक तो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जब भी जहां से भी खरीदें

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि सामायिकी। कार्यक्रम कृषि सामायिकी में बैगन की फसल में तना एवं फल छेदक कीट नियंत्रण विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सत्यनारायण सिंह तोमर। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM 100.2 MHz पर। और अब हम आपको जानकारी देते हैं कार्यक्रमों से संबंधित।

श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से रिले कार्यक्रम के तहत सुनेंगे संस्कृत में समाचार सुबह 6:55 पर। सुबह 7 बजे हिंदी में समाचार होंगे और 7:05 पर आप सुनेंगे लघु वार्ता। आज की लघु वार्ता का विषय रहेगा वसुंधरा। 7:10 पर प्रादेशिक समाचार, 7:20 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। सुबह 7:45 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। ये कार्यक्रम आज आप मेरे साथ सुनेंगे। 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। दोनों कार्यक्रमों का अनुप्रसारण हम दिल्ली केंद्र से करेंगे। 8:30 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 9 बजे कार्यक्रम लोक रंग में आज आप सुनेंगे ठाकुरलाल राठौर, राजेश कुशवाहा के गाए हुए कुछ लोकगीत। 9:30 पर एक बार फिर फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपके पत्रों के माध्यम से आपके पसंदीदा गीतों को सुनवाएंगे। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे भोपाल से जिले की चिट्ठी। सुबह 10:05 पर कार्यक्रम सुगम संगीत, और सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे भूपेंद्र सिंह को। सुबह 10:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश एक बार हम फिर से लेकर आएंगे और आपको सुनवाएंगे आपके पसंद के कुछ गीत। सुबह 11 बजे से लगातार आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के तहत आप सुनेंगे लगातार आकाशवाणी का प्रसारण। दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज इंदौर केंद्र की प्रस्तुति को शामिल किया जाएगा। दोपहर 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा और फिर लगातार आप सुनते रहेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। शाम 5 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के तहत आप सुनेंगे युववाणी। इंदौर केंद्र की प्रस्तुति रहेगी। शाम 6 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के तहत हम दिल्ली से रिले करेंगे और 6:30 पर आप सुनेंगे एक बार फिर से आकाशवाणी मध्य प्रदेश से साझा किए जाने वाले कार्यक्रम। शाम 7 बजे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश मुख्यालय केंद्र भोपाल से आप सुनेंगे हिंदी समाचार। तो ये थी कार्यक्रम संबंधित जानकारी श्रोताओं जो हमने आप तक पहुंचाई। आपसे थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः सम्बन्धः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्री

0: नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्यानन्तरं श्रम प्रवास डिजिटल तंत्रज्ञान रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र एकादश सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्तवार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानाम् उन्नतिः सह विश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
1: AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्स्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिक रूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। द्विपञ्चाशत्तमं G7 शिखर सम्मेलनं ह्यः एवियन नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानां अर्थव्यवस्थानां नेतारः प्रमुखेषु वैश्विक समाह्वानेषु विचार विनिमयं कुर्वन्ति। राष्ट्रपतिः मैक्रों वर्यः प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समाह्वानान् निवारणाय संयुक्तरूपेण कार्याचरणस्य विषये कार्यरात्रिभोजस्य आयोजनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प, यूके देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यादिभिः नेतृभिः सह G7 देशानां नेतृणाम् औपचारिकरूपेण स्वागतं विहितवान्। यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला फोन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषदः अध्यक्षः एंटोनियो कोस्टा च शिखर सम्मेलने भागं भजन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः ह्यः फ्रांस देशे मोनाको देशस्य राज्यमन्त्रिणा क्रिस्टोफ मिरमैंड, विदेश कार्य सहकार मन्त्रिणा इजाबेल बेरो आमादेई, वित्त अर्थव्यवस्था मन्त्रिणा फेडरिक कोटालोर्डा इत्येतैः सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीय पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् द्वैपाक्षिक व्यापारं सुदृढं कर्तुं नूतनान् निवेशावसरान् अन्वेष्टुं भारत मोनाको देशयोः मध्ये उपवेशनम् आर्थिक सहकारं सुदृढं कर्तुं च केन्द्रितम् आसीत्। संघलोक सेवा आयोगेन UPSC इत्यनेन अस्य वर्षस्य लोकसेवा प्राथमिक परीक्षायाः परिणामाः घोषिताः। UPSC ह्यः सूचितवान् यत् अस्मिन् वर्षे 1,000+ रिक्तस्थानेषु लोकसेवा मुख्यपरीक्षायाः कृते आहत्य 13,000+ अभ्यर्थिनः चिताः सन्ति। परीक्षार्थिनः UPSC इत्यस्य आधिकारिक वेबफलके upsc.gov.in इत्यत्र प्राथमिक परीक्षाफलं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इति

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एविया पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर

0: मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय पर रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रभाव को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। केंद्र ने NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के संबंध में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजेहना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो कार्डो करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दाम्बुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं श्रोताओं, और आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से प्रस्तुत है लघु वार्ता। आज की लघु वार्ता का विषय है वसुंधरा। श्रोताओ, ये वसुंधरा, ये जमीन, ये धरती, ये पर्यावरण, ये इंसान के जीवन के पर्यायवाची हैं। ये वसुंधरा अगर नहीं तो इंसान नहीं। लेकिन इंसान ये बात समझने को राजी नहीं, और यही विडंबना है कि आज वसुंधरा आपके सामने एक रौद्र रूप में नजर आ रही है। अगर आप अपने आसपास देखना चाहेंगे तो रेत का बवंडर हो, तेज हवाओं के साथ चलने वाली आंधियां हो, बारिश का भयावह दौर हो या बढ़ता धरती का तापमान, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सामान्य नहीं हैं। और इन सामान्य चीज़ों को हम असामान्य महसूस तब कर रहे हैं जब प्रकृति अपना रूप बदल रही है। ये वसुंधरा हमसे कहने का प्रयास कर रही है कि हम इंसान कहीं तो कोई चूक कर रहे हैं, और उस गलती को पकड़ने के लिए हमारा आपका मंथन प्रयास दोनों जरूरी हैं। अगर आप अपनी गलती को समझकर थोड़ा सा मंथन कर प्रयास करना शुरू करेंगे तो शायद ये स्थितियां बदल जाएं। क्या हमने और आपने कभी सोचा है कि आज जिस दौर में हम जी रहे हैं वहाँ कठिनाइयाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इन कठिनाइयों का सामना और चुनौतियों का सामना करने की जिम्मेदारी एक इंसान की है। परिस्थितियों से लड़ना उसका स्वभाव है, लेकिन इन परिस्थितियों के जन्मदाता के रूप में भी इंसान अगर ये स्वीकार कर ले कि कहीं ना कहीं उसी की चूक और गलतियों की वजह से ये स्थितियाँ पैदा हुई हैं, तो शायद स्थितियां बदलने लगेंगी। हमें यह सोचना और विचार करना होगा कि हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए क्या देकर जा रहे हैं। क्या हम उन्हें एक स्वस्थ स्वच्छ वातावरण दे पाने में कामयाब हुए हैं? हम कहाँ जा रहे हैं वो भी हमें सोचने की जरूरत है। ये वसुंधरा आज जिस दौर से हमारा परिचय करा रही है वो दौर एक भयानक दौर है। बात डरने और घबराने की नहीं, लेकिन संभल जाने की ज़रूर है। और ये प्रकृति शायद यही कह रही है कि अगर इंसान संभला नहीं तो उसके हाथ से स्थितियां निकल जाएंगी, और अगर स्थितियां उसके हाथ से निकल गई तो फिर इस धरती पर जीवन को बचाएगा कौन? क्या आपने महसूस किया कि इस ग्रीष्म ऋतु में हमने 45 डिग्री के ऐसे तापमान को झेला जहाँ हम बेचैन नजर आए? क्या आपने महसूस किया कि रेगिस्तान से उठने वाले रेत के भयानक बवंडरों ने हमारे शहरों को जैसे ढांक लिया? क्या आपने महसूस किया कि तेज हवाओं में बड़े बड़े टीनशेड और तमाम पेड़ पौधे उखड़ते हुए नजर आए? आपने इस बात को महसूस किया कि बारिश का जब दौर आया तो भयावह स्थिति नजर आई। कहीं ग्लेशियर टूटे तो कहीं पहाड़ों से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई। ये सारी स्थितियाँ उस बदलते मौसम और ग्लोबल वार्मिंग की हैं जिसे आज वसुंधरा को मजबूर होकर इंसानों के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ रहा है। ये वसुंधरा हमारी माँ है, हमारी जननी है, हमें आश्रय देती है, जीवन यापन में हमें सब कुछ मुहैया कराती है और उसके बदले में कोई शुल्क भी नहीं लेती है। लेकिन हम इंसान न जाने क्यों इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि इस वसुंधरा को कुछ रिटर्न करना हमारा भी कर्तव्य है। बस वही रिटर्न हमने नहीं किया, इसलिए वसुंधरा हमसे नाराज है। प्रकृति हमेशा देने और लेने पर विश्वास रखती है। आप प्रकृति का संरक्षण करने के लिए आगे आएंगे तो प्रकृति आपका भरण पोषण पालन पोषण करेगी, वो भी निशुल्क, लेकिन उसकी केयर जरूरी है। हम इंसान न जाने क्यों तमाम वो गलतियां करते हैं। अपने जलाशयों को हमने बर्बाद कर दिया, हमने अपने प्राकृतिक स्रोतों को कम करते करते इतना भयावह स्तर पर ले आए कि हम आज खुद हैरान परेशान हैं। पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते लोग, जगह जगह पानी के लिए लगता जाम, ये सारी स्थितियाँ हमारी द्वारा बनाई गई है। तो आप प्रकृति का, इस वसुंधरा का संरक्षण कीजिए और इस स्वच्छ जीवन में सांस लीजिए। थोड़ी देर में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह सचिव ने नीट UG पुनः परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संस्कृति विभाग से सभी समाजों की परंपराओं से जुड़े कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में प्री मानसून सक्रिय, आज ग्वालियर भोपाल समेत 30 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। इस पुरस्कार को श्री मोदी ने गर्मजोशी, विश्वास और भारत तथा स्लोवाकिया के लोगों को एकजुट करने वाले प्रेम का प्रमाण बताया। इससे पहले उन्होंने भारत स्लोवाकिया संबंधों को लेकर संबोधित करते हुए कहा कि
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों के दौरे के तीसरे चरण में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत करेंगे। इसके बाद श्री मोदी शिखर सम्मेलन के कार्यकारी सत्र में भाग लेंगे, जिसका विषय है नई साझेदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना। इस सत्र में G7 देशों के नेताओं, सहयोगी देशों के प्रमुखों और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। बैठक के दौरान श्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के निमंत्रण पर फ्रांस के एवियन शहर का दौरा भी करेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत G7 शिखर सम्मेलन में 13वीं बार हिस्सा ले रहा है और प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार इसमें शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा को लेकर उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए इस परीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम कल घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया कि 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि पिछले वर्ष 1087 रिक्तियां थीं और मुख्य परीक्षा के लिए 14000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन किया गया था। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल मंत्रालय में हुई बैठक में संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 6-7 माह में बड़े त्यौहार, सांस्कृतिक पर्व एवं मेले मनाए जाएंगे। ये सभी त्यौहार हमारी धार्मिक आस्थाओं और प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक हैं। इन सभी अवसरों पर संस्कृति विभाग सभी समाजों को उनकी आस्थाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़कर वृहद आयोजन करे। प्रदेश में वर्ष 2025-26 की कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा आज से शुरू हो रही है। ये 23 जून तक चलेगी। इस परीक्षा में सत्र 2025-26 की मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण एवं अनुपस्थित विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदेश भर में कुल 2795 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी। कक्षा 5वीं की पुनः परीक्षा में लगभग 1,17,000 से अधिक और कक्षा 8वीं के लगभग 1,32,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रदेश को एग्रो सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में कल नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम और जर्मन सरकार समर्थित इंडो जर्मन एग्री वोल्टाइक सहयोग परियोजना के बीच

0: समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर आदान प्रदान किया गया। इसमें बताया गया कि एग्रीवोल्टाइक कृषि एवं सौर ऊर्जा के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया एक संगठन है, जिसका उद्देश्य कृषि भूमि पर खेती के साथ साथ उसी खेत में ही सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करना है, ताकि अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता कम हो, खाद्य सुरक्षा बनी रहे तथा भूमि संबंधी विवादों से भी बचा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के शीर्षक से एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
1: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: छत्तीसगढ़ में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एवं सब जूनियर कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 12 से 14 जून तक आयोजित इस प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के खिलाड़ियों ने 25 स्वर्ण, 11 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ कुल 39 पदक अर्जित किए। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बेटों और बेटियों ने सभी 4 वर्गों में चैंपियनशिप जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अब करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून इस हफ्ते दस्तक दे सकता है। उससे पहले राज्य के बड़े हिस्से में प्री मानसून की गतिविधियां सक्रिय हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए भोपाल, ग्वालियर समेत करीब 30 जिलों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ कन्या क्रीड़ा परिसर में बड़ी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत छात्राओं का चयन 22 जून से 26 जून तक किया जाएगा। नर्मदापुरम के पचमढ़ी वायसन लॉज में आज उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा जिला प्रशासन के द्वारा आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा पन्ना के पवई विधानसभा क्षेत्र में लाभार्थी संपर्क कार्यक्रम में संवाद करेंगे। मंडला में आज समान नागरिक संहिता के उच्च स्तरीय समिति सदस्य बुधपाल सिंह आरडी कॉलेज में आयोजित जन परामर्श समिति बैठक में शामिल होंगे। डिंडौरी में उत्कृष्ट विद्यालय मैदान करंजिया में जन कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। सतना में पल्स पोलियो अभियान के लिए कुल 1809 टीकाकरण बूथ, 7 ट्रांजिट बूथ और 26 मोबाइल टीमें बनाई गई हैं। और आगरमालवा जिले के कानड़ स्थित प्राचीन हनुमान बावड़ी पर बावड़ी उत्सव और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे फ्रांस। केंद्रीय गृह सचिव ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संस्कृति विभाग से सभी समाजों की परंपराओं से जुड़े कार्यक्रम करने का किया आह्वान। और प्रदेश में प्री मानसून सक्रिय, आज ग्वालियर और भोपाल समेत 30 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: हम आकाशवाणी
2: FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का ये प्यारा सा

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से प्रस्तुत है हमारा दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार

सभी श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं आपका रेडियो मित्र अतुल और हम आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप सब खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे और यकीनन परिवार, समाज और देश के लिए काम कर रहे होंगे। ये कार्यक्रम हम हर रोज लेकर आते हैं आपके बीच और आपको जानकारियों से अपडेट करते हैं, तमाम वो जानकारियां मुहैया कराते हैं जो जानकारी आपको जानना ज़रूरी है। सुबह सुबह अपडेट करने का मतलब ये है कि जब आप अपने घर से काम की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो आपको आसपास होने वाली सारी गतिविधियों से हम परिचित कराकर, सचेत करके, सावधान करके, सूचनाओं से पूरी तरह लैस करके अपने गंतव्य तक भेजना चाहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में भी कुछ इसी तरह की बातें हैं, इसी तरह की जानकारियां हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आनंदम, जी हाँ, मध्य प्रदेश शासन के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा कौशल विकास स्वरोजगार विभाग के निर्देशन एवं कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार, स्वरोजगार एवं अन्य जो कार्यक्रम हैं उनका आयोजन 25 जून को किया जाएगा। जिला स्तर पर आयोजित यह कार्यक्रम प्रातः 11 बजे से श्री कृष्ण महाविद्यालय भद्रवास में संपन्न होगा। कार्यक्रम का आयोजन उच्च शिक्षा विभाग, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के समन्वय से किया जाएगा। तो आप रोजगार से संबंधित अगर किसी तरह की जानकारी चाहते थे तो हमने आपको ये जानकारी दे दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर एसडीएम ने एक बैठक ली। 21 जून को छत्रसाल महाविद्यालय परिसर में होगा सामूहिक योग कार्यक्रम। 15 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को आयोजित होने वाले सामूहिक योग कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पिछोर श्रीमती ममता शाके ने सोमवार को नवीन एसडीएम कार्यालय में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, व्यवस्थाओं एवं विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने किया ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं मशीनों के रखरखाव का लिया जायजा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अर्पित वर्मा ने सोमवार को कठमई स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था एवं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के रखरखाव संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह त्रैमासिक निरीक्षण किया जाता है। जनकल्याण शिविरों में समस्याओं के त्वरित निराकरण से नागरिकों को मिली राहत। पौरी में दूसरे चरण के शिविरों का शुभारंभ, हितग्राहियों को वितरित किए गए स्वीकृत पत्र। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार विश्व पर्यावरण दिवस से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तथा आयोजित किए जा रहे जनकल्याणकारी शिविरों के दूसरे चरण की शुरुआत सोमवार से जिले में हुई। जनपद पंचायत पौरी एवं नगर परिषद पौरी में आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में नागरिकों ने पहुंचकर अपनी समस्याओं एवं आवेदन प्रस्तुत किए। विभिन्न विभागों के द्वारा प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अनेक प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण किया गया। शिक्षा में नवाचार से युवाओं को मिल रहे रोजगार के नए अवसर। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस में रोजगार परक पाठ्यक्रमों एवं इंटर्नशिप योजनाओं पर विशेष जोर देने की बात सामने आई है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न नवाचारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। महाविद्यालय में आधुनिक शिक्षा के साथ कौशल विकास एवं रोजगार उन्मुख कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिससे विद्यार्थियों को बेहतर कैरियर अवसर प्राप्त हो सकें। सर्किल जेल शिवपुरी में राज्यव्यापी योग अभियान का शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में 15 से 21 जून 2026 तक जिले की समस्त जेलों में एक सप्ताह के
प्रदेश व्यापी

कर्मचारीगण उपस्थित रहे। मणिखेड़ा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के तहत जलापूर्ति अवयवों की टेस्टिंग प्रारंभ। ग्रामीणों से प्रारंभिक दिनों में पेयजल उपयोग न करने की अपील। जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध एवं नियमित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित मणिखेड़ा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत विभिन्न अवयवों का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। योजना के कई महत्वपूर्ण अवयवों का कार्य पूर्ण होने के बाद अब चयनित ग्राम पंचायतों में जलापूर्ति व्यवस्था की टेस्टिंग प्रारंभ कर दी गई है। लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत पौरी के अंतर्गत योजना से जुड़े ग्रामों में 12 जून 2026 से जलापूर्ति अवयवों की परीक्षण प्रक्रिया शुरू की गई है। किसी भी बड़े नीतिगत परिवर्तन के लिए जन सहयोग जरूरी। डॉक्टर शोभा पैठणकर समान नागरिक संहिता यूसीसी पर जन परामर्श एवं सुझाव बैठक संपन्न। समान नागरिक संहिता यूसीसी के संबंध में जन परामर्श हेतु आज शासकीय श्रीमंत माधवराज सिंधिया स्नातोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी में बैठक आयोजित की गई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की सदस्य डॉ. शोभा पैठणकर द्वारा बैठक में समान नागरिक संहिता के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने इसके संभावित स्वरूप, अन्य राज्यों के अनुभव, सामाजिक समरसता और नागरिक अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपना पक्ष रखा। खरीफ सीजन में किसानों को खाद की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित। जिले में 30,971 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध। 71,000 से अधिक किसानों ने किया उठाव। खरीफ सीजन को दृष्टिगत रखते हुए जिले में किसानों के लिए उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। कृषि विभाग द्वारा उर्वरक वितरण एवं उपलब्धता की नियमित निगरानी की जा रही है, जिससे किसानों को समय पर आवश्यक खाद उपलब्ध हो सके। किसान रोजगार और वो तमाम जानकारियां जो आपके लिए महत्वपूर्ण थी, उन्हें हमने समाहित किया, आप तक पहुँचाया, और यही हमारा उद्देश्य है इस कार्यक्रम का कि हम आपके आसपास होने वाली तमाम गतिविधियों, शासकीय योजनाओं, शासकीय नीतियों और तमाम उन चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपका जानना ज़रूरी है। अब कुछ और जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। और ये जो बदलाव का मौसम है, इसमें चिकित्सक क्या कहते हैं, वो जानकारी भी आप तक पहुंचाना महत्वपूर्ण समझते हैं, और यही बात हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ग्रीष्म ऋतु में थे, अब हम मानसून ऋतु में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में जो हमारी शारीरिक तंत्र प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है, क्योंकि एक मौसम से हम दूसरे मौसम की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में प्री मानसून वर्षा शुरू हुई है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 3 से 4 दिनों में 5 दिनों में मानसून मध्य प्रदेश में सक्रिय होगा और बारिश का दौर शुरू होते हुए हम देखेंगे। लेकिन इस दौरान जो चिकित्सक आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को परामर्श देते हैं, वो कहते हैं कि इस मौसम में ख्याल रखने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से बच्चे और बुज़ुर्गों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। और एकदम से जब बारिश हो तो बारिश के पानी में भीगने की जो आदत होती है कई बच्चों की, उन्हें रोकने की ज़रूरत है। और इस दौरान हम ये भी ध्यान रखें कि जब हम इस बदलते मौसम में प्रवेश करेंगे, यानी ग्रीष्म ऋतु से हम मानसूनी चक्र में प्रवेश करेंगे, तो कुछ खाने पीने की जो हमारी दिनचर्या में आदतें हैं उन पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा सुपाच्य भोजन ग्रहण करें जो आसानी से हजम हो सके और आपका शरीर सक्रिय रह सके। जहाँ तक है वहाँ तक अभी हम पानी का ज़्यादा सेवन कर रहे थे, तो अगर हम मानसूनी प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो ऐसा नहीं कि पानी का सेवन एकदम से कम कर दें। जो नियमित पानी है उसको थोड़ा थोड़ा जो ज़रूरत के हिसाब से हम शरीर की आपूर्ति के लिए देते हैं वो देते रहें। तो ये जो प्रक्रिया है वो सामान्य तौर पर हमारे सामने होगी और हम आसानी के साथ ग्रीष्म ऋतु से मानसूनी चक्र में प्रवेश करेंगे और हमारा शरीर उसके

अनुसार धीरे धीरे ढलने लगेगा। एहतियात के तौर पर अभी भी ग्रीष्म से हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि आसपास जो माहौल है उसमें अभी धूप है, तो धूप में निकलने से बचें, अपना ख्याल रखें और पूरी सावधानी के साथ घर से बाहर निकलें। चलते चलते मौसम की बात करते हैं, और मौसम से संबंधित जो जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं उसमें हमारे मौसम वैज्ञानिकों का योगदान होता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हम आप तक जानकारी मुहैया कराते हैं, और वह जानकारी इसलिए होती है ताकि आपके आसपास अगर मौसम बदलता है या मौसम में कोई विकरालता देखी जाती है तो हम आपको सचेत कर देते हैं। तो इसी उद्देश्य से इस मौसम से संबंधित जानकारी को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में, या यूं कहें कि पूरे मध्य प्रदेश में प्री मानसून की बारिश रिकॉर्ड की गई है। आज भी कई जिलों को बारिश के लिए अलर्ट किया गया है, जहां प्री मानसून बारिश, तेज़ हवाएं चलने का अनुमान मौसम वैज्ञानिकों ने जताया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों में हम मानसूनी चक्र में प्रवेश करेंगे और आसपास मानसूनी बादल बरसते हुए नज़र आएंगे। उम्मीद करते हैं कि इस बार मानसून सामान्य रहे, और मौसम विभागों ने कहा है कि मौसम के इस दौर में मानसूनी वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। हालांकि जो किसान मौसम चक्र का अनुमान लगा के अपनी बुवाई और खेतों में काम करने की जो गति बनाकर रखते हैं वो अब सक्रियता के रूप में देखी जा रही है, और इस मौसम के अनुरूप वह अपने खरीफ की फसलों की बुवाई में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मानसून का प्रवेश अगले 2-4-5 दिनों में होने वाला है, और मध्य प्रदेश में ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं कि अच्छी बारिश होगी ताकि मध्य प्रदेश और देश हमारा खुशहाल रहे। और इसी उस उद्देश्य के साथ में हम मानसून का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। तो कई जिलों के साथ साथ शिवपुरी के अंचल में भी आज तेज़ गरज बरज के साथ कुछ बारिश हो सकती है, तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं और प्री मानसून बारिश का दौर देखा जा सकता है। तो अगर हवाएं तेज़ चलें और बारिश ज़्यादा तेज़ होती हुई दिखाई दे तो सावधान रहें, सचेत रहें और दूसरों को और अपने आप को सुरक्षित रखें। अब आपसे वक्त है विदा लेने का, और उम्मीद करते हैं कि आप यकीनन खुशहाली के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, समाज, परिवार और देश के लिए काम कर रहे होंगे। तो इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार। शिवपुरी।

0: नमस्कार शिवपुरी।
1: घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हुर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
5: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों फ्रांस।
4: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय एलएनजी टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
6: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
7: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
8: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
7: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
6: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
9: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
6: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
10: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में हुरमुज जल डमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हुरमुज जल डमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति इस समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
4: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
11: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मानसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
4: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के व्योम में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे। To also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha, carrying 62,370 metric tons of LNG cargo, safely crosses Strait of Hormuz. 8 people killed after B-52 bomber crashes at US Air Force base in Southern California. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. President of Slovakia

FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। मैं हूँ आपका रेडियो मित्र अतुल। मेरी ओर से आप सब श्रोताओं को नमस्कार। फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आप ही की पसंद का ये गीत आप तक पहुँचाते हैं। गीत सुनने की फरमाइश भेजी है अजय कुमार शर्मा, देवेंद्र कुमार शर्मा, गीता शर्मा और राहुल शर्मा के साथ उनके परिवार के सदस्यों और मित्रजनों ने। पत्र आया है कमलागंज घोषीपुरा शिवपुरी से, तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद।

अलू बेले देखे जवानी के रेले देखे हसीनों के मेले देखे दिल पे हो।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपके पसंद के गीत। सुबह के 9 बजे हैं और आकाशवाणी से प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकरंग। कार्यक्रम लोकरंग में आज हम आपको सुनवा रहे हैं ठाकुरलाल राठौर और राजेश कुशवाहा के गाए हुए कुछ लोकगीत। सबसे पहले ठाकुरलाल राठौर से सुनते हैं कुछ।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुँचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ

0: अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है।
3: ये अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। लीजिए अगला फरमाइशी गीत सुनिए। फरमाइश भेजी है नितिन शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों और मित्रजनों ने। पत्राया है कमलागंज शिवपुरी से। इसी गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है श्री राम कॉलोनी शिवपुरी से प्रांजल भार्गव, प्रमोद भार्गव, आभा भार्गव, दीक्षा भार्गव और उनके परिवार के सदस्य और नन्नी परी और मित्रजन। साथ ही इसी गीत को सुनने की फरमाइश के साथ फरमाइशी पत्र आया है नवाब साहब रोड शिवपुरी से। फरमाइश करते हैं विनोद खेमरिया, मनोरमा खेमरिया, अजय खेमरिया, गुंजन खेमरिया, शरद खेमरिया, पूजा खेमरिया और परिवार के सदस्य और मित्रजन। तो लीजिए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम।

0: बोल रहे हैं, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रीवा जिले की चिट्ठी। आलेख आरती श्रीवास्तव का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। रीवा जिले में इन दिनों गर्मी, उमस और बारिश की बूंदों वाले मिले जुले मौसम का असर देखा जा रहा है। कभी धूप की तेज तपन है तो कभी तेज आंधियां अपना असर दिखा रही हैं, लेकिन इन सबके बीच भी तेज गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। जिले में 12 जून से जन कल्याण शिविर आयोजित कर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों के आवेदन पत्र भरवाए जा रहे हैं। 18 जून तक चलने वाले जन कल्याण शिविरों की मॉनिटरिंग के लिए सभी अधिकारी क्षेत्र के विकास खंड मुख्यालयों तथा नगरी निकायों में आयोजित शिविरों में पहुंचते हैं। अधिकारियों द्वारा शिविरों में विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। शिविरों में स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, आयुष्मान योजना, संबल योजना, प्रधानमंत्री किसान कल्याण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, व्यय वंदन योजना, आयुष्मान भारत योजना तथा अन्य योजनाओं के आवेदन पत्र भरवाए जा रहे हैं। आगामी 21 जून को होने वाले योग दिवस को लेकर योग सप्ताह जिले में भी मनाया जा रहा है। केंद्रीय कारागार रीवा में बीते दिनों इसके तहत योग शिविर का आयोजन किया गया। वहीं उप जेल त्योथर में भी योग शिविर का आयोजन किया गया। विश्व रक्तदाता दिवस पर 14 जून को जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त पहल पर आयोजित रक्तदान शिविरों में लोगों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। संजय गांधी अस्पताल में 50 यूनिट तथा ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित शिविर में 7 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। जिले में इन दिनों खेत बचाओ अभियान में किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग एवं प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए जोर दिया जा रहा है। इस संबंध में जिले के सिरमौर विकास खंड के अंतर्गत बीरखाम गाँव में कृषि विभाग एवं आत्मा परियोजना के संयुक्त तत्वावधान में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और लगातार संघर्ष के बल पर युवा अपनी मंजिलों को हासिल कर ही लेते हैं। इसे ही चरितार्थ कर दिखाया है रीवा जिले के ग्राम बुसौली निवासी बाबूलाल रावत।

बाबूलाल का चयन भारतीय सेना में हुआ है। बाबूलाल रावत शासकीय आईटीआई रीवा के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र रहे हैं। बाबूलाल बताते हैं कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने पिछले 4 वर्षों तक लगातार कड़ा संघर्ष और अथक परिश्रम किया है। रीवा जिले में मछली पकड़ने पर आज से 15 अगस्त तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। वर्षा काल में मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने जिले के सभी जलाशयों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। इस अवधि में मछली का शिकार, विनिमय तथा परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले भर में पौधरोपण के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में संभागायुक्त सहित अन्य अधिकारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने पौधे लगाए। कृषि विभाग द्वारा जिले भर में किसानों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया गया। वन विभाग ने जयंती कुंज में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन विषय पर एक विशेष संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन भी किया। वहीं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रीवा परिसर में मातृशक्तियों द्वारा पौधों का रोपण कर प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया गया। बीते दिनों रीवा के कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में प्राकृतिक खेती की जागरूकता के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किसानों से प्राकृतिक खेती करने का आह्वान किया। आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत पुलिस प्रशिक्षण शाला रीवा में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसमें जिला पुलिस बल, विशेष सशस्त्र बल एवं होमगार्ड के कुल 49 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के तहत निर्मित रीवा जिला स्थित गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन टनल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। रेलवे अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर पूरे टनल में कुल 52 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं। इन कैमरों के माध्यम से टनल के प्रत्येक हिस्से पर नजर रखी जाएगी। कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग रीवा स्थित रेलवे सुरक्षा बल द्वारा की जाएगी। बीते दिनों रीवा के मेहरसेन तरणताल में 54वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 114 इवेंट्स में 18 जिलों के 200 खिलाड़ी तथा उनके साथ 50 ऑफिशियल्स भी शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विजयी खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए। रीवा जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे रीवा जिले की चिट्ठी, आलेख आरती श्रीवास्तव का, वाचक स्वर अभिषेक कटियार का। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा।

यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 10:05 हुए हैं और आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं भूपेंद्र सिंह को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत में भूपेंद्र सिंह से

0: हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानना चाहेंगे आपके विचार। कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे में, कि आपके दैनिक जीवन में प्लास्टिक का क्या महत्व है, या हम कहें कि बाजार जाते समय, यात्रा करते समय आप प्लास्टिक बैग, पॉलिथीन का प्रयोग करते हैं, क्या ये सुविधाजनक है या फिर इसके कुछ नुकसान भी हैं। हम जानना चाहेंगे आपके विचार। हमारे फोन नंबर 2660902 और भोपाल के बाहर के श्रोता साथी हमें एसटीडी कोड लगाकर यानी 0755 लगाकर हमसे बात कर सकते हैं। तो हमें इंतजार है आपके विचार का और आपके फोन का। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार मैम।
0: आपका नाम जानना चाहेंगे हम।
1: जी मैम, मैं सचिन बात कर रहा हूँ, जिला संभल, ग्राम सिरसा से।
0: जी, तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज है कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे, है ना। और आज हम आपसे जानना चाहेंगे आपके विचार, है ना, आपके विचार जानना चाहेंगे, है ना? एक दैनिक जीवन में आने वाली एक बात है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपके विचार। जैसे आप अपने घर पर हैं या कहीं बाहर यात्रा करते हैं तो प्लास्टिक का कितना उपयोग करते हैं, प्लास्टिक के पॉलिथीन बैग, इन सब चीजों का उपयोग आप करते हैं? करते हैं
1: जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे प्लास्टिक जो होती है वो उसका सिंगल यूज जो प्लास्टिक होती है उसको एक निर्धारित करें कि हमें कितना करना है। उससे पहले तो एक थैला लें आप, तो वो ही बाजार में लेके जाएं, तो उससे थोड़ा पॉलीथीन कम होती है,
0: है ना। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्लास्टिक है वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है, आप जानते हैं प्लास्टिक का उपयोग, और पॉलीथीन जिसका उपयोग हम कर रहे हैं आज अपने दैनिक जीवन में बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है ना। तो क्या ये हमारे लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, आपको पता है?
1: जी मैम, ये बहुत खतरनाक हो सकती है। जैसे कि हम कहीं से भी निकलते हैं तो जैसे देखते हैं कि कुछ पशु खा लेते हैं तो कहीं गंदगी बहुत रहती है, ये उड़ती हैं तो खेतों में बहुत नुकसान कर देती
0: हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं, हाँ यही मैं जानना चाह रही थी आपसे, है ना। हाँ। कि ये पॉलिथीन का उपयोग हमें कम कम करना ही नहीं चाहिए, इसके हाँ, बदले हमें कपड़े के थैले, है ना, कपड़े के थैले हो गया उसका उपयोग करें बाजार जाते समय, है ना। तो ये अगर छोटी छोटी चीजों का हम अगर ध्यान रखते हैं तो हम अपने पर्यावरण को बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। क्या सोचते हैं आप?
1: तो ये तभी होगा जब हम सजग रहेंगे और हम कदम उठाएं एक कदम स्वच्छता की ओर, तो ये तभी संभव हो पाएगा।
0: जी बिल्कुल, और ये हम सभी का दायित्व है, है ना?
1: जी, हाँ, ये तो सभी का दायित्व है।
0: जी जी,
1: और आपने अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें,
0: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ,
1: तो गंदगी नहीं होगी।
0: बिल्कुल, तो आपने देखिए फोन किया, इसके लिए आपका बहुत

0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, आपका नाम बताएं।
1: दीदी मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ, सारनाथ वाराणसी से।
0: सारनाथ वाराणसी से आप बात कर रहे हैं। चलिए, कार्यक्रम
1: जी
0: में आपका स्वागत है, आपने फोन किया है।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: हाँ जी, तो आपने फोन किया है कार्यक्रम बात आपकी और गीत हमारे में, है ना?
1: जी जी जी।
0: और हम एक विचार जानना चाहेंगे आपके, आप हम सभी इस देश के नागरिक हैं, है ना? तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे हम अधिकतर अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक बैग, है ना, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक का सामान यूज करते हैं, तो ये कहाँ तक हमारे लिए अच्छा होता है ये बताएं।
1: मेरी देखिए ये तो अच्छा है नहीं, ये तो इंसान अपनी सुविधा के लिए करता है।
0: जी जी जी, बिल्कुल।
1: प्रकृति के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है।
0: हाँ,
1: क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानदेह है।
0: हाँ,
1: ये जहाँ पड़ा रहता है गलता भी नहीं है।
0: बिल्कुल अच्छी बात।
1: जलाने पर धुआं निकलता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो इसलिए ये हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है। और हम लोगों को

0: का उपयोग नहीं करना चाहिए।
1: हाँ
0: और पहले दीदी मैं देखता था कि पहले जब इसका चलन नहीं था,
1: हाँ
0: तभी तो मार्केट था, तभी तो लोग सामान ले आते थे।
1: बिल्कुल वही
0: ये
1: हम
0: तो
1: जानना
0: है
1: चाह रहे हैं।
0: इसके पहले बाजार ही नहीं था या हम लोग नहीं थे
1: हाँ बिल्कुल, मैं
0: तो।
1: यही हाँ आपसे जानना चाह रही हूँ कि जैसे बाजार जाते समय, यात्रा करते समय हम बहुत सारी ऐसी चीज हैं, कपड़े के बने थैले हैं, है ना, स्टील की बॉटल है, इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना, यात्रा करते समय, बाहर जाते समय।
0: इसके इसके इजाद से पहले दीदी वही होता था कि लोग जाते थे मार्केट में तो कपड़े के थैले ले जाते थे या कागज के बैग मिलते थे,
1: हाँ जी
0: उसमें
1: जी जी
0: सामान ले आते थे जो
1: हाँ
0: कि फेंकने फेंको देने पर सड़ जाते थे और मिट्टी हो जाते थे। तो
1: बिल्कुल
0: इस जमाने में ये बात था।
1: हाँ
0: अब क्या है कि हर जगह इसका सुविधा है, लोग वही लेके चले जाते हैं
1: बिल्कुल
0: और कोई थैला लेके जाना नहीं चाहता है।
1: हाँ। और बस हम तो
0: जबकि ये हमारे लिए मतलब प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है कि हम इसका उपयोग ना करें।
1: बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही, और जो सारे हमारे साथी सुन रहे हैं वो भी ये चीज को मानेंगे कि हमें अधिक से अधिक वैसे चीजों का उपयोग करना चाहिए जो हमारे पर्यावरण के लिए
0: मैं दीदी
1: बहुत अच्छी होती हैं। जैसे हाँ
0: मैं
1: बताएं।
0: बताना चाहूंगा कि जब ये प्लास्टिक नहीं था
1: जी
0: तब भी मार्केट लोग जाते थे और तब भी मार्केट करते थे, सामान
1: जी
0: ले आते थे, तो उस वक्त दुकानदार जो कागज के
1: जी
0: थैले देते थे
1: हाँ हाँ
0: या हम लोग अपना कागज कपड़े का थैला लेके जाते थे उसमें सामान ले आते थे, तो ये तो हम लोगों ने मतलब अपने सुविधा के लिए बना लिया, ये अच्छी
1: बिल्कुल
0: बात नहीं
1: बिल्कुल
0: है।
1: अच्छी बात
0: और
1: नहीं
0: मैं
1: है।
0: तो कहना चाहूंगा इसका इग्नोर करना चाहिए,
1: हाँ
0: बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो हम तो यही चाहेंगे कि आप वही चीजों का इस्तेमाल करें जो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल हो, है ना। इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी प्रकृति भी अच्छी रहेगी और हम भी स्वस्थ रहेंगे, है ना। आपने फोन किया
0: और
1: इसके लिए। हाँ
0: ये
1: जी
0: मुहिम जन-जन की होनी चाहिए,
1: बिल्कुल
0: ये नहीं
1: बिल्कुल
0: कि
1: हाँ
0: सभी की होनी चाहिए।
1: सभी
0: जी
1: की होना चाहिए, है ना। चलिए आपने फोन किया इसके लिए आपका

0: नमस्कार।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका। गोपाल
1: नमस्ते मैडम, मैं गोपाल ओझा बोल रहा हूँ, ग्राम ककवासा, जिला गुना से।
0: ओझा जी, है ना। चलिए
1: आपका ही
0: कार्यक्रम।
1: मैं सोता हूँ, मैं तो पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ आकाशवाणी भोपाल के। तो
0: अच्छा, चलिए आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आज हम कुछ बातें साझा कर रहे हैं। कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में, है ना। वो ये है कि जैसे बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं अपने घर पर, है ना।
1: हाँ
0: तो
1: करते हैं ना
0: उनमें,
1: मदद।
0: हाँ, उनमें प्लास्टिक का सामान भी होता है, प्लास्टिक की पॉलिथीन, प्लास्टिक की बॉटल, है ना। तो
1: हाँ होती
0: क्या
1: है।
0: ये सारी चीजें हमारे लिए अच्छी होती हैं, प्लास्टिक की पॉलिथीन, प्लास्टिक के पैकेट
1: हाँ
0: और
1: ये
0: बॉटल।
1: होते हैं ना, तो फिर वो क्या होता है, तो वो घर में ही रखते हैं हम।
0: नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि प्लास्टिक क्या आपके लिए अच्छा है।
1: प्लास्टिक तो अच्छा।
0: प्लास्टिक का अगर हम अधिक से अधिक उपयोग करते हैं, या प्लास्टिक की पॉलिथीन को हम बाहर यूं ही फेंक देते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे आपका पर्यावरण प्रदूषण होगा। प्लास्टिक,
1: हाँ जी मैडम जी जी
0: ये जानना चाह रही हूँ मैं, है ना। क्योंकि देखिए, पॉलिथीन अगर आप फेंक देते हैं, प्लास्टिक की बोतल कहीं पर भी फेंक देते हैं, तो ये मिट्टी में मिलती नहीं है ना जी। ये कचरा इकट्ठा होता जाता है, इसको हमारे पशु खा लेते हैं, है ना। नदियों में जमा हो जाता है, तो नदियाँ भी
1: नदियों में
0: प्रदूषित
1: जमा
0: हो
1: हो
0: जाती
1: जाते
0: हैं।
1: हैं।
0: हाँ, और वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए कैसी रहेंगी बताएं।
1: हाँ स्वास्थ्य के लिए तो वो तो क्या है, वो तो नुकसान ही है,
0: हाँ, उससे हमारे, हमें समस्या होगी, है ना। तो
1: समस्या होती है मैडम।
0: जी, तो मैं तो यही चाहूँगी गोपाल ओझा जी कि प्लास्टिक का उपयोग हम ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा
1: ना
0: होगा,
1: करें
0: है
1: ना
0: ना।
1: करें जी, सही
0: हाँ
1: बोला है आपने
0: जी,
1: मैडम
0: है
1: जी।
0: ना। और अपने घर के छोटे बच्चे, युवा अवस्था वाले जो भी बच्चे हैं, उनको सबको समझाएं, है ना। तभी ये बात जन जन तक पहुंचेगी, है ना। आपने फोन किया, इसके
1: जी
0: लिए
1: मैडम
0: आपका
1: जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: जी नमस्ते, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: मैडम जी नमस्कार, पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ मैडम जी, छत्तीसगढ़ गंडई पंडरिया से। जी
0: जी पवन कुमार सेन जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम
1: बहुत
0: बात
1: बहुत
0: आपकी गीत हमारे में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे मैडम जी, और आकाशवाणी का तो हम पुराने श्रोता हैं,
0: जी,
1: और
0: हाँ
1: रेडियो तो एनी टाइम चलते रहते हैं हमारे, रेडियो मोबाइल के द्वारा सुन लेते हैं मैडम जी आप लोगों की प्रसारण।
0: हाँ हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप सुनते हैं हमारे कार्यक्रम, है ना?
1: जी, हाँ
0: तो
1: नहीं
0: आज
1: कार्यक्रम
0: हम
1: विशेष रूप से सुनता हूँ मैडम जी।
0: जी, बिल्कुल आज हम आपसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे आपके विचार कि जैसे हम अपने जीवन में प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक की पॉलिथीन बैग, है ना, पैकेट, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं बाहर जाते हैं, है ना, किसी अच्छे पर्यटन स्थल पर मार्केट में, और जाके उन्हें फेंक देते हैं, तो क्या ये चीज़ सही है?
1: बिल्कुल गलत है मैडम जी। अब क्या है, अब आजकल के आदमी को कौन समझाए, कैसे समझाए यहाँ।
0: देखिए, हम तो ये कहेंगे कि सबसे पहले हमें अपने को ये जानना होगा कि प्लास्टिक हमारे लिए बहुत उपयोगी है या खतरनाक है, इस पर सोचना
1: बहुत
0: पड़ेगा।
1: खतरनाक है मैडम जी। अब क्या है, कई पशु पक्षी भी इसे खा लेते हैं, गाय लोग खाते हैं,
0: हाँ
1: और उसमें क्या है, कई प्रकार के बीमारी भी पैदा होते हैं मैडम जी। अब मैं तो कहता हूँ कि इस

0: और हम ये चाहेंगे कि आप हम सभी पॉलिथीन का उपयोग ना करें, प्लास्टिक बैग है ना, इन सब का उपयोग ना करें, वो चीजें करें जो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल हो, अच्छी हो, है ना।
1: मैडम जी,
0: हाँ,
1: बिल्कुल।
0: कपड़े के थैले, कागज है ना, और स्टील की बोतल, इन सब का उपयोग करें, है ना।
1: जी, हम क्या है, हम लोग ना विशेष रूप से अब रेडियो में जो बताए जाते हैं बातें, उसको अपने जीवन में अमल जरूर करते हैं मैडम जी। हम जब भी सब्जी लेने जाते हैं तो बिल्कुल अपने घर से थैला लेके जाते हैं।
0: बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। और मैं ये सोच रही हूँ कि बहुत सारे लोग इस बात को सुन भी रहे हैं, है ना, ये भी अच्छी बात है। जी बिल्कुल। और साथ साथ हम ये भी सिखाएं लोगों को, अपने घर के बच्चों को, छोटे बच्चों को, है ना। हाँ, इस बारे में उन्हें जानकारी दें कि अधिक से अधिक उन चीजों का इस्तेमाल करें जो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल हो। आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार मैडम जी, नमस्ते।
1: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका।
0: जी मैडम,
1: आपका नाम बताएं।
0: मैं सुमत कुमार जैन, पिंडरी जिला मंडला से रिटायर्ड शिक्षक बोल रहा हूँ मैडम
1: जी। तो आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और
0: जी सुमत,
1: हाँ जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे आजकल देखिए पर्यावरण बहुत सारी चीजों से प्रभावित हो रहा है ना आजकल, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, कहीं बाढ़ अधिक आ रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारे जीवन में, है ना। और प्रदूषण भी बहुत अधिक बढ़ रहा है, ठीक है ना। और इसके लिए कहीं कहीं हम भी दोषी हैं, जैसे हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बॉटल, पॉलीथीन। तो क्या इनका उपयोग करना अच्छा होता है, बताएं।
0: हमारे चारों तरफ फैली हुई समस्त वस्तुएं,
1: जी,
0: जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो भी चीजें हमारे चारों तरफ फैली है, सब पर्यावरण ही है मैडम
1: जी, बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल।
0: इसे सुरक्षित रखना प्रत्येक मनुष्य का
1: हाँ
0: संकल्प लेकर के काम करना चाहिए, इसे सुरक्षित
1: हाँ
0: रखना।
1: जी बिल्कुल।
0: रहा सवाल ये पेड़ पौधे जो कट रहे हैं,
1: जी
0: बड़े बड़े जो पहाड़ या जो सड़कें या जो खेल मैदान या कुछ भी बन रहे हैं, वो पहाड़ पेड़ पौधों को काट करके बनाए जा रहे हैं, इससे हमारा पर्यावरण असंतुलित हो रहा है मैडम
1: जी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इस पर्यावरण को संतुलित करने में हम सभी की भागीदारी होनी चाहिए, जन जन की
0: हमें
1: भागीदारी, है ना।
0: मैडम एक काम करें, लेकिन
1: जी
0: क्या है, आप पॉलिथीन का उपयोग बहुत अधिक हो रहा है, उस पर कोई
1: बिल्कुल
0: ध्यान
1: बिल्कुल।
0: नहीं दे रहा है।
1: प्लास्टिक की बोतल हम खा पी कर प्लास्टिक के
0: बोतलें
1: पैकेट फेंक देते हैं
0: जहाँ
1: कहीं पर
0: चाहे
1: भी,
0: जहाँ रास्ते में
1: हाँ
0: फेंक देते हैं लोग,
1: जी
0: वही
1: जी
0: उसका,
1: बिल्कुल हाँ।
0: हाँ
1: और उसको देखिए हमारे पशु खा लेते हैं, है ना, नदियों में
0: हाँ
1: जमा हो जाते हैं, इससे
0: बिल्कुल
1: कितनी
0: बिल्कुल।
1: अधिक
0: पशुओं
1: गंदगी
0: को
1: और
0: भी, पशु
1: बीमारियां फैल
0: वगैरह
1: रही हैं
0: जो सामान रख के ले
1: जी
0: जाते हैं उसे भी ऐसे कहीं भी फेंक देते हैं, तो
1: जी
0: पशु खाते हैं, तो पशु भी मृत हो जाते हैं। तो
1: बिल्कुल
0: ये हमारी कुछ सुरक्षा है, पेड़ पौधे लगाना,
1: जी
0: संकल्पित होकर के कोई अच्छे कार्य करना
1: बिल्कुल
0: जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे,
1: बिल्कुल बिल्कुल। ये
0: और
1: हमारा
0: लोगों
1: ही
0: में ऐसी
1: दायित्व
0: भावना
1: होगा,
0: पैदा, जागरूक
1: बिल्कुल
0: पैदा करना चाहिए।
1: हाँ, ये हमारा ही दायित्व
0: तो
1: होगा, जन जन का दायित्व होगा
0: बहुत
1: कि
0: अच्छा
1: वो
0: विषय है आपका और
1: जी
0: बहुत बढ़िया आप विषय को उठाया है। जितने भी देश के अंदर रेडियो श्रोता हैं, वो आपके इस कार्यक्रम को सुन रहे और देख रहे होंगे, तो निश्चित रूप में ये जनता को प्रभाव पड़ेगा और जागरूकता आएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: पर्यावरण हमारा सबसे जीवन को सफल और सुरक्षित रखने का एक साधन है,
1: जी
0: जिसे
1: जी
0: हमें अब स्वयं को भी उपयोग करना पड़ेगा
1: जी
0: और स्वयं भी सुरक्षित रखने के लिए हमें पेड़ पौधे और ये
1: अधिक से
0: बात
1: अधिक लगाने पड़ेंगे,
0: और पानी
1: बिल्कुल
0: वगैरह इत्यादि
1: हाँ।
0: का
1: और
0: उपयोग,
1: उसके बिल्कुल बिल्कुल, और उसके पश्चात उसकी देखभाल भी जरूरी है कि पेड़
0: बिल्कुल
1: पौधे, है ना, बढ़ रहे
0: बिल्कुल
1: हैं कि नहीं, उनमें खाद डालें, उनका ध्यान रखें, है ना
0: बिल्कुल
1: जी
0: बहुत
1: बिल्कुल।
0: बढ़िया।
1: तो
0: आपका
1: आपने फोन
0: अभी
1: किया
0: बात याद हो रही
1: जी, बिल्कुल आपने

0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: हेलो नमस्कार मैम
0: नमस्ते, आपका नाम बताएं।
1: जी, मैं लक्ष्मी प्रति बात कर रही हूँ।
0: लक्ष्मी,
1: जी लक्ष्मी गुहारा, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से।
0: और क्या करती हैं, क्या करती हैं आप?
1: मैं पढ़ाई करती हूँ,
0: पढ़ाई
1: करती हूँ,
0: करती हैं।
1: बीए स्टूडेंट, बीए की छात्रा हूँ।
0: अच्छा, तो आज हमने कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका फोन लगा है और कुछ बातें हम आपसे जानना चाहेंगे, है ना? जैसे आप अपनी पढ़ाई कर रही हैं उसमें आप पर्यावरण के बारे में

0: पर्यावरण प्रदूषण होता है, और जैसे गाड़ी वाहन है उनसे भी पर्यावरण प्रदूषण होता है। हम कई ऐसी चीजें भी ले आते हैं जैसे कि कुछ प्लास्टिक वाली चीजें हैं वो जल्दी नष्ट नहीं होती हैं, और हमको हम उनको ऐसे खुले में फेंक देते हैं,
1: है ना। हाँ बिल्कुल,
0: उनसे भी प्रदूषण होता है।
1: हाँ बिल्कुल, और हम उनका लगातार उपयोग कर रहे हैं, जैसे प्लास्टिक पॉलिथीन है, बॉटल।

0: कर रहे थे,
1: वही मैं कहना
0: तो मैं लाभदायक भी हूँ।
1: हाँ।
0: और आज बढ़ती जनसंख्या के कारण अधिकतर प्रदूषण फैल रहा है।
1: हाँ बिल्कुल। और लेकिन हमारा दायित्व तो ये भी है खुश लक्ष्मी जी कि हम इसे संरक्षित करें, पर्यावरण को अधिक से अधिक

0: जी
1: हेलो
0: नमस्कार,
1: नमस्कार मैडम, आकाशवाणी भोपाल से, नाम
0: आपका नाम बताएं।
1: सोनकंत ग्राम पटेरी जिला दमोह से बोल रहा हूँ।
0: तो आपका फोन लगा है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका फोन लगा है ना।
1: जी मैडम,
0: तो हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। कहाँ आप, कौन से गांव, मतलब कहाँ रहते हैं आप? दमोह में रहते हैं ना?
1: ग्राम ग्राम पटेरी है जिला दमोह।
0: हाँ जी। तो आपने अपने आसपास देखा होगा कई बार लोग प्लास्टिक के बैग, पॉलिथीन है ना, बॉटल का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक की बॉटल का उन्हें फेंक देते हैं। तो क्या
1: जी
0: ऐसा
1: मैडम,
0: करना आपको सही लगता है?
1: नहीं मैडम ये तो गलत है। ये प्लास्टिक के सामान है जो यहाँ वहाँ निकले अगर, जिनको इकट्ठा करके जला देना चाहिए।
0: हाँ, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि प्लास्टिक की चीजें को हम जलाते हैं तो उससे धुआं भी निकलता है, वो धुआं भी खतरनाक होता है ना।
1: हाँ मैडम, हाँ
0: हाँ, तो मैं
1: प्रदूषण
0: ये
1: भी।
0: कहना चाह रही हूँ कि प्लास्टिक की बजाय हम कपड़े की थैली, जूट के थैले है ना,
1: हाँ
0: स्टील के
1: इनका उपयोग
0: बॉटल,
1: ज्यादा से ज्यादा करें।
0: ज्यादा से ज्यादा इनका उपयोग करें है ना।
1: हाँ इनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, और जो प्लास्टिक की वस्तुएं हैं इनका उपयोग कम करें, ज्यादा
0: ना,
1: कम करें, उससे
0: प्रकृति,
1: प्रदूषण नहीं
0: जी
1: फैलेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति से जो जुड़ी चीजें हैं है ना, जो पुराने समय में हम उपयोग करते थे, तो क्यों ना उन्हीं चीजों को हम फिर से उपयोग करें जो भूल गए थे शायद हम।
1: हाँ मैडम, अभी जो पहले जमाने में उपयोग करते थे उन्हीं को उपयोग करें तो बेहतर रहेगा, प्रदूषण नहीं होगा,
0: बिल्कुल
1: स्वस्थ रहेंगे,
0: बिल्कुल,
1: वातावरण में शुद्ध हवा मिलेगी,
0: हाँ
1: स्वास्थ्य ठीक
0: बिल्कुल
1: रहेगा।
0: बिल्कुल है ना। हम यही आपसे जानना चाह रहे थे, और इसमें हम सबकी भागीदारी होगी तभी हमारा
1: सबकी
0: पर्यावरण
1: भागीदारी से हम
0: जी सुरक्षित रहेगा है ना।
1: सुरक्षित रहेंगे।
0: बिल्कुल,
1: जी
0: तो आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत

0: जी नमस्कार। हाँ जी,
1: नमस्कार दीदी।
0: आपका नाम बताएं।
1: सनी शर्मा, गंजवासोदा
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? आपकी जगह का नाम बताइए।
1: राजीव नगर।
0: अच्छा जी, तो कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और आज आपने फोन किया है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में, और हम कुछ बातें आपसे करना चाहेंगे, आपके विचार भी जानना चाहेंगे कि आजकल पर्यावरण में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, प्रदूषित हो रहा है पर्यावरण, तो इसके लिए
1: यार
0: क्या
1: मैम,
0: हम दोषी हैं कहीं ना कहीं?
1: जी,
0: कैसे बताएं,
1: हाँ हम दोषी हैं क्योंकि हम प्रदूषण फैलाते हैं।
0: है ना? बहुत सारी चीजें हम ऐसे भी उपयोग करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक के बॉटल। इसके अलावा हम अपनी जो बहुत सारी गाड़ियां भी आजकल चल रही हैं, और
1: हाँ कचरे की गाड़ी में कचरा
0: बिल्कुल
1: डाल
0: बिल्कुल,
1: रहे हैं।
0: और दूसरी बात यह है कि जैसे कि एक कार है या एक बाइक है, उसमें हम एक ही व्यक्ति जा रहे हैं, हो सकता दो भी जा सके, है ना? कार में तीन लोग
1: हाँ
0: चार लोग
1: दीदी,
0: भी जाके जा सकते हैं अपने निश्चित स्थान पर। तो
1: हाँ
0: इससे क्या होगा कि पेट्रोल की बचत भी होगी और साथ ही साथ जो धुआं हो रहा है, प्रदूषण है, वो भी कम होगा। क्या सोचते हैं आप?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कुछ ऐसी
1: हाँ
0: चीजें
1: दीदी
0: हमें
1: सही कहा।
0: अपनानी पड़ेंगी कि हम अपनी बिजली, अपनी ऊर्जा
1: जी हाँ दीदी,
0: की बचत करें।
1: जी हाँ
0: और क्या कर सकते हैं हम बताएं? आप पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए, संरक्षित करने के लिए और क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से उपाय?
1: हाँ हम कचरे की गाड़ी में कचरा डालें, प्रदूषण ना फैलाएं दूसरे वाली गाड़ी में।
0: और दूसरी
1: हाँ
0: बात हम ये चाहें

0: ये था कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, जिसमें आज हमने अपने सभी श्रोता साथियों से जाने कि पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें अपनानी चाहिए। आपके विचार जान के हमें बहुत अच्छा लगा। तो दीजिए मुझे इजाजत, अपनी रेडियो मित्र श्वेता को नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी श्वेता तिजोरिया की। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों के दौरे के तीसरे चरण में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियन पहुंचेंगे, जिसके बाद श्री मोदी शिखर सम्मेलन के कार्यकारी सत्र में भाग लेंगे, जिसका विषय है नई साझेदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना। 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश भी राज्य सरकारों को दिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल राज्य में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये रिसर्च सेंटर महू स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और शैक्षणिक संस्थान

0: संगठनों के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों एवं सांदीपनि विद्यालयों में आज से 30 जून तक स्कूल चले हम अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत शाला प्रारंभ उत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत प्री प्राइमरी से 8वीं तक के समस्त स्कूलों में बाल सभा के आयोजन के साथ ही पहले दिन विशेष भोज का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर व सब जूनियर कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। चैंपियनशिप में 25 स्वर्ण, 11 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ कुल 39 पदक प्रदेश के खिलाड़ियों ने अर्जित किए और प्रदेश में इस हफ्ते मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने आज के लिए भोपाल, ग्वालियर समेत करीब 30 जिलों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को साधना जैन का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? पहला गीत हमने आपके लिए लिया है, फिल्म है एक दूजे के लिए, लता मंगेशकर के साथ एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस सब गीत को पसंद किया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने, चिट्ठियां भेजी हैं। बीना जिला सागर से विमल कठरिया, राजमती कठरिया, सलिल सुनीता कठरिया, संजय रत्ना कठरिया, ग्वालियर से स्नेहलता हरिश्चंद, छिंदवाड़ा से अशोक जैन, शोभा जैन, जुमेराती भोपाल से संजय संध्या जैन और सुनील जैन गौतम नगर से। तो आप सभी की पसंद पर हम भेज रहे हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश आकाशवाणी मध्य प्रदेश से और मैं हूं आपके साथ साधना जैन। अगला गीत चौदहवीं का चांद इस फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, गीत लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत है रवि का। और इस गीत को बड़ी दूर से हमें चिट्ठियां भेजी हैं अमेरिका के बॉस्टन से डॉक्टर विजय प्रकाश जैन, उनकी मित्रा बिंदु जैन, आपके परिवार से प्रियांक, पुनीता, अंकुर, आर्जव, अनिरुद्ध, जो भारत में अपने भाई और रिश्तेदारों को सुनाना चाहते हैं डॉक्टर विजय प्रकाश जी की ओर से, नागपुर से डॉक्टर विजय जैन, लता व किशोर मोहरिल, हेमंत देश पांडे, मोहन और रमेश बल्लाल को सुनाना चाहते हैं। तो लीजिए डॉक्टर विजय प्रकाश जी अमेरिका में सुनिएगा और नागपुर में अपने दोस्तों को सुनवाइए चौदहवीं का चांद इस फिल्म का ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश साधना के साथ। अगला गीत ड्रीम गर्ल फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाज है। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को पसंद करना चाहा है दिल्ली से बुलबुल आदि आर्यवीर, सपना और परिवार के सदस्य। दिल्ली से ही पंडित अशोक शास्त्री, सोनागिर से शशि श्रेयांश, पप्पू जैन, खंडवा से बबली जैन ने इस गीत को सुनना चाहा। आप सभी की पसंद पर ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत है।

0: की भला आँख में चोली, दाई आँख बंद की बाई आँख खोली।
1: किसने?
2: मैंने?
1: नहीं तो?

आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। मैं हूं साधना। सरस्वती चंद्र का वो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। मुकेश की आवाज में गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, और इस गीत को पसंद किया है दिल्ली से डॉक्टर विजय प्रकाश जैन, इंदौर से साइकिल वाले परिवार में चंदा जैन, सुशीला जैन, अरविंद उषा सिंघई, महेंद्र सिंघई, जितेंद्र भारती सिंघई और राजेश जैन, रजनीश जैन, रत्नेश जैन, निशांत, आशीष जैन, अंकेश जैन, मोहित, जानू जैन। और इसी गीत को सुनना चाहा है इंदौर से ही बिंजल, सुरभि, सिद्धि, सुनीता, रचना प्रीति, रेशु और सारिका ने। इसी गीत को सुनना चाहा है शशि जैन ने पालीताना से। तो आप सभी की पसंद पर भेज रहे हैं सरस्वती चंद्र का ये गीत।

तीसरी कसम फिल्म में मुकेश को हसरत जयपुरी ने संगीत लिखा है और शंकर जयकिशन ने हसरत जयपुरी ने इसका गीत लिखा है और संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने। और आप सभी ने इस गीत को पसंद किया है। दिल्ली से बिंदु, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर ने इस गीत को पसंद किया है। साथ ही रियांश ठाकुर भी हैं। तो आप सभी सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश और आपकी फरमाइश का अंतिम गीत उपकार फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ है। गीत लिखा है गुलशन बाबरा ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। और इस गीत को पसंद किया है जबलपुर से पातली वाले रुचिर शिखा ओमी और कामनी जैन ने। इसी गीत को पसंद किया है नवीन निश्चल अक्षत साहिल मनु जैन नेहा जैन सौम्या जैन जूही श्रुति जैनिशा जैन बीना से। तो आप सभी की पसंद पर भेज रहे हैं हम उपकार फिल्म का अंतिम गीत।

अभी आप सुन रहे थे आपकी फरमाइशों में थी आपके साथ साधना जैन। इसी गीत के साथ संपन्न होती है आज के फरमाइश की ये यात्रा। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण अंतराल के बाद।

0: जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्ध सैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसमें सुनिएगा जंग लगी तलवार का भाग 11।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, नारायणी के पकड़े जाने पर सभी लोग हकीकत जानने के लिए ठाकुर साहब के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। ठाकुर उन्हें बताता है कि भूख की मारी नारायणी इतनी रात गए उनसे पैसे मांगने आई थी। यशवंत नारायणी की ओर से बलबीर स्वामी से माफी मांगता है और नारायणी को घर छोड़ने जाता है। कंपनी अपना घाटा पूरा करने के लिए अपनी शर्तों पर बाहर से नए मजदूरों को बुलाती है। शांत पड़ी मशीनों का शोर फिर से शुरू हो जाता है। ये देखकर हड़ताली मजदूरों के सीने पर सांप लौटने लगता है। यूनियन के नेता शास्त्री जी से मिलने जाते हैं। शास्त्री से उन्हें पता चलता है कि लेबर इंस्पेक्टर मुंशीगंज के किसानों को मजदूरों को अनाज न देने के लिए भड़का रहा है। फंड का इंतजाम करने के लिए शास्त्री कंपनी के सीमेंट के ट्रक को लूटने की सलाह देता है। उधर कंपनी के दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर नया नोटिस लगाया जाता है, जिसमें हड़ताल को अवैध करार देते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा इस बात को मान्यता देने का उल्लेख होता है। नारायणी अपने मुन्ना के साथ तरबूज को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहती है, जिसे उसने कटीली झाड़ियों के नीचे छिपा दिया था। साई नदी के तट पर पहुंचने पर नारायणी को बसुमती मिलती है, जो कि तरबूज खा चुकी होती है। बसुमती नारायणी को बताती है कि ठाकुर साहब नपुंसक हैं और उसे उसके चरित्र पर कोई संदेह नहीं है। ये सुनकर नारायणी खुश होती है। अब आगे

0: शास्त्री जी, अगर जल्द ही कुछ न किया गया तो हमारे हित में अच्छा नहीं होगा। मजदूर हमारे खिलाफ भी विद्रोह कर सकते हैं।
1: उन भूखे नंगे मजदूरों की ये मजाल की हमारे खिलाफ विद्रोह करें? क्या वह जानते नहीं कि हम उनके लोकल लीडर हैं?
0: बात को समझने की कोशिश कीजिए शास्त्री जी। ये वही भूखे नंगे मजदूर हैं जिनके बल पर आपका राजनैतिक अस्तित्व टिका हुआ है। अगर ये भड़क गए तो कोई आपको कौड़ियों के भाव भी नहीं पूछेगा।
1: बलबीर, तो फिर हमें क्या करना चाहिए?
0: अरे कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
1: ठीक है ठीक है, मैं कल ही कंपनी के अधिकारियों से मिलता हूं। हड़ताली मजदूरों का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और मेरा राजनीतिक अस्तित्व भी बचा रहेगा। भाई अगली बार विधानसभा का चुनाव जो लड़ना है मुझे, 4000 वोट बहुत मायने रखते हैं बलबीर, बहुत मायने। देखिए ठाकुर साहब, आपकी कंपनी ने अभी अगस्त महीने में ही दिहाड़ी मजदूरों को बर्खास्त करने का नोटिस दिया था, और अब फिर? अरे भाई ये कहां का न्याय है? कुछ तो मजदूरों के हित की सोचिए।
2: देखिए शास्त्री जी, मजदूरों को तभी बर्खास्त किया जाता है जब कंपनी के पास उनके लिए कोई काम नहीं होता, और फिर हड़ताल का इसलिए भी कानूनी तौर पर समर्थन नहीं किया जा सकता क्योंकि सन 75 में हुए समझौते पत्र के अनुसार हड़ताल जायज नहीं है।
1: क्या इस समझौता पत्र पर मजदूर यूनियन की सहमति भी शामिल है ठाकुर साहब?
2: देखिए पिछले दिनों यूनियन और अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई थी।
1: ठीक,
2: इस बैठक में प्रोजेक्ट और मजदूरों की छटाई के मुद्दे पर भी बातचीत हुई थी। लेकिन इस बैठक के उद्देश्य लिखित रूप से तैयार करने और हस्ताक्षर करने तक यूनियन के नेता बहाना बनाकर चले गए थे।
1: क्या
2: बाद में हमें खुद सब कुछ तैयार करके अधिकारियों के पास भेजना पड़ा? अब आप देख ही रहे ना कि यूनियन हमें किस तरह निशाना बना रही है।
1: अब हमें क्या पता ठाकुर साहब कि यूनियन कंपनी को किस तरह निशाना बना रही है, आप बताइए।
2: यूनियन हमारी इसी चिट्ठी को निशाना बनाकर भोले भाले मजदूरों को गलत रास्ते पर ले जा रही है। हमेशा अधिकारियों के साथ कुछ बेबुनियाद विषय को लेकर बहस और झगड़ा करती रहती।
1: देखिए देखिए ठाकुर साहब, आप और आपकी कंपनी मजदूर यूनियन पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। अरे आपकी कंपनी मजदूर हितों की भक्षक है जबकि यूनियन रक्षक है। कंपनी हितों को साधने और मजदूरों को शोषण करने बाबत ही आप ऐसा कर रहे हैं, सब जानते हैं हम।
2: नहीं नहीं शास्त्री जी, हमारे पास अपनी बात के पक्ष में पर्याप्त तर्क हैं।
1: कैसे तर्क?
2: मिसाल के तौर पर मासिक वेतन पाने वाले मजदूरों और रोज की मजदूरी करने वालों की सुरक्षा की मांग की गई है, जबकि सन 75 के समझौते पत्र के अनुसार कंपनी के पास काम न हो तो मासिक वेतन पाने वालों को लंबी छुट्टी पर भेज दिया जाता है और दिहाड़ी मजदूरों को बर्खास्त कर दिया जाता है।
1: इसका मतलब ठाकुर साहब कि कंपनी ये मानती है कि इस समझौता पत्र को नकार कर यूनियन ने कोई गैर कानूनी काम किया है।
2: जी हाँ, इसके अलावा बुजुर्गों का ज्यादा ध्यान रखे जाने की मांग भी बिल्कुल निरर्थक है।
1: अच्छा, वो किस मायने में?
2: सन 47 के औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार यूनियन के साथ समझौता न होने पर बुजुर्गों को भी निकाला जा सकता है। इस बारे में कंपनी के पास सन 75 में बनाया गया कानूनी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी है।
1: तो आप मुझे कानूनी एग्रीमेंट का डर दिखा रहे हैं ठाकुर साहब? मैं भी लीगल फाइट करवा सकता हूँ, लीगल फाइट। अरे आपने यूनियन को समझ क्या रखा है?
2: कैश में ना आइए शास्त्री जी, सन 75 के ही राजीनामे के अनुसार कंपनी के लिए महत्वपूर्ण काम करने वाले मजदूरों को तुरंत नए विभाग में काम मिल सकता है, लेकिन उनका वेतन और अन्य सुविधाएं स्थानीय परिस्थितियों पर ही निर्भर रहेंगी। कंपनी इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती।
1: क्या कहा आपने? क्या कहा? कंपनी इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती?
2: जी हाँ,
1: जिला और केंद्र ने जो कानून बनाए हैं क्या उन कानूनों का कंपनी पालन करती है? कंपनी को दिहाड़ी मजदूरों और मासिक वेतन पाने वाले मजदूरों की कोई चिंता है या नहीं?
2: आप तो खामखा भड़क रहे हैं शास्त्री जी।
1: अरे मैं भड़कू नहीं तो और क्या करूं? हाथ पर हाथ धरे तुम्हारी सारी जायज नाजायज बातों को मानता रहूं।
2: देखिए शास्त्री जी, माना कि आप राय बरेली के लोकल लीडर हैं, आपका मान सम्मान और दबदबा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप गलत को भी सही ठहराने की कोशिश करें।
1: ऐसा मैंने क्या कह दिया?
2: अभी तक तो नहीं किया पर कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कंपनी बर्खास्त मजदूरों को जिला और केंद्र के कानून के अनुसार पैसा देती रहती है। नियम अनुसार उन्हें दूसरी जगह काम पर भेजते समय रेल और बस का किराया भी मिलता है। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि बर्खास्त मजदूरों को जल्दी से जल्दी दूसरी जगह काम पर भेजा जाए।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात कही है ठाकुर साहब, क्या सबूत है आपके पास ठाकुर साहब?
2: अच्छा अच्छा, आप सबूत की बात करते हैं
1: जी,
2: तो ठीक है सुनिए। पुराने दिहाड़ी मजदूरों को माधोपुर कंपनी का काम खत्म होने के बाद बर्खास्त किया गया था
1: जी,
2: लेकिन वो मजदूर अब अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। इन लोगों को काम छूटने पर वेतन के अलावा 300 रुपए अलग से दिया जाएगा।
1: बड़ा एहसान करेंगे यहाँ, बड़ा एहसान करेंगे ठाकुर साहब। सारी जिंदगी आधी पगार देकर काम लेने वाली कंपनी 300 रुपल्ली पकड़ाकर मजदूरों का भला करने चली है। वाह,
2: देखिए शास्त्री जी, कंपनी दूसरी कंपनियों की अपेक्षा मजदूरों को सबसे अधिक वेतन देती है, फिर दूसरी कंपनियों में भी तो मजदूरों को बर्खास्त किया जाता है। कंपनी हमेशा बर्खास्त मजदूरों को नए विभाग में बहाल करती आई है।
1: ठाकुर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि बर्खास्त कितने मजदूर होते हैं और बहाल कितने होते हैं? ब्यौरा तो होगा आपके पास।
2: देखिए, ये कंपनी का निजी मामला है, बाहरी लोगों के सामने इन बातों का खुलासा नहीं किया जा सकता।
1: अरे क्या करेंगे खुलासा आप, क्या खुलासा करेंगे आप? मुझसे सुनिए आप, बर्खास्त होते हैं 1000 मजदूर तो बहाल होते हैं सिर्फ 100-200 मजदूर, और वो भी सिर्फ कंपनी के चहेते। क्यों, ठीक कह रहा हूं मैं?
2: देखिए, मैं आपसे अधिक बहस नहीं करना चाहता, आपकी जानकारी के लिए सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि कंपनी ने पुराने मजदूरों के प्रति हमेशा सहानुभूति दिखाई है। जिन मजदूरों ने 20 साल से अधिक कंपनी के लिए काम किया है, उन्हें स्वैच्छिक अवकाश की सुविधा दी गई है। ऐसे मजदूरों को ग्रेच्युटी स्कीम की सुविधा भी दी जाती है।
1: चलिए ठाकुर साहब, हम आपकी ये बात भी मान लेते हैं, लेकिन ये तो बताइए कि यूनियन की डीए बंटवाने की मांग पर आपका क्या नजरिया है?
2: ठीक है, यूनियन की इस मांग से कंपनी किसी हद तक इत्तेफाक रखती है, लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3 महीने के बाद ही मिल पाएगा, तभी इस पर अमल हो सकता है, इसीलिए यूनियन की ये मांग भी निरर्थक।
1: और बोनस, बोनस मजदूरों को कब दिया जाएगा, ये बता सकते हैं आप?
2: देखिए, कंपनी ने मजदूरों को पहले ही बता दिया है कि सन 76-77 का बोनस सन 78 के मार्च महीने के बाद ही दिया जाएगा, क्योंकि तभी इसके नफा नुकसान का हिसाब तैयार किया जाएगा।
1: वाह वाह ठाकुर साहब, बहाना बनाकर टालने में बहुत पारंगत हो गए हैं आप, लेकिन मेरा नाम भी शास्त्री है ठाकुर साहब, शास्त्री। अब आप ग्रेच्युटी की मांग को भी किसी बहाने से खारिज कर देंगे, क्यों?
2: देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 20 साल से कंपनी की सेवा करने वाले खास मजदूरों को ही यह सुविधा दी जाती है।
1: मैं कंपनी के खास मजदूरों, नहीं, मजदूरों नहीं, खास चमचों या 20 साल पुराने मजदूरों की बात नहीं कर रहा हूं ठाकुर साहब, मैं बाकी के उन मजदूरों की बात कर रहा हूं जिन पर कंपनी की टेढ़ी नजर है।
2: देखिए, आप सरकारी कर्मचारियों के लिए बने ग्रेच्युटी एक्ट की बात कर रहे हैं, ये एक्ट कंपनियों पर लागू नहीं होता।
1: हाँ ठाकुर साहब, हमने तो सोचा था कि हम बातचीत के जरिए किसी सार्थक निर्णय पर पहुंच सकेंगे, लेकिन ठाकुर साहब, आपकी लफाजी की वजह से बात बन नहीं सकी। चलते चलते आपको एक बात बता दूं ठाकुर साहब,
2: क्या?
1: भले ही मजदूरों को शहीद होना पड़े, भले ही साई नदी में पानी की जगह रक्त का उफान बहे, लेकिन हड़ताल जारी रहेगी ठाकुर साहब, याद रखिएगा, हड़ताल जारी रहेगी।
2: क्या?

0: ए बाबू, ए बाबू, कुछ खाने को देना, बहुत भूख लगी है।
1: अरे
0: कुछ खाने को।
1: कौन है रे तू? कहाँ से आई है?
0: मैं दलितों की बैरक में रहती हूँ बाबू, कुछ खाने को देना, पिछले एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया है।
1: अच्छा, तो तू यूनियन के साथ है?
0: बातें ना बना बाबू, रोटी का कोई टुकड़ा है तो देना, भूख लगी है।
1: हाँ, अरे अरे अरे, तू जवान है, खूबसूरत है, अरे तू भूखी क्यों मरती है? अरे मुझसे कह ना, मैं तुझे यहाँ से दूर ले चलूंगा। हाँ सच, मेरे साथ रहेगी तो फिर कभी भूखी नहीं रहेगी।
0: सच सच बाबू, तू मुझे रोज खाना खिलाएगा?
1: हाँ, मैं सच कहता हूँ, खाना भी खिलाऊंगा और पहनने के लिए नए नए कपड़े भी दूंगा।
0: सच बाबू, तू कितना अच्छा है। मेरा बाबू और दादी ना तो मुझे खाने को देते हैं, ना ही नए कपड़े दिलवा।

0: कहीं से कुछ खरीद कर खा ले।
1: बाबू बाबू तेरा ही एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी।
0: अरे अरे सुन सुन, अपना नाम तो बता दे।
1: मेरा नाम पार्वती है बाबू।
0: हाँ हाँ, तो पार्वती कल शाम को स्टेशन पर मिलियो। हाँ मैं तेरा इंतजार करूंगा, आई ना।
1: अच्छा आऊंगी बाबू, आऊंगी।
0: ठीक है,
1: जरूर आऊंगी।
0: ठीक है पार्वती।

0: नारायणी
1: आओ काकी।
0: हाँ भगवान तेरा भला करे नारायणी, जो तू हमको मिल गई। अच्छा पहले ये बता कि तेरा मर्द कैसा है?
1: कैसे होंगे काकी, मौत की राह देख रहे हैं।
0: चुप कर निगोड़ी, हैं क्या अनाप शनाप बक रही है?
1: तुम बताओ काकी, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी?
0: अरे हाँ, तुझे एक बात बतानी थी।
1: कौन सी बात?
0: होशियार रह नारायणी, होशियार।
1: हाँ?
0: तुझे नहीं मालूम कैसे भयानक दिनों का सामना करना पड़ सकता है?
1: भयानक दिन? मैं कुछ समझी नहीं काकी।
0: अरे हम मुंशीगंज में काम के लिए गए थे। हम बीमार लोगों के कपड़े धो सकते हैं, यहाँ तक कि 5 महीने का गर्भ।
1: राम राम राम राम राम। क्या हुआ काकी, क्या कहीं काम नहीं मिला?
0: अरे वो काम की क्या कहूँ, बस पीने का पानी मांगा तो गाली दे दी, कुत्ते पीछे छोड़ दिए।
1: देख नारायणी, तेरी गोद में एक नन्ना बच्चा है, जब छटनी होगी तो जेठ महीने की लू में तू राय बरेली की सड़क पर बच्चे को लेकर कहाँ कहाँ फिरेगी। और फिर तेरा वो बीमार मर्द, उसको भी घसीटना पड़ेगा, तो क्या करेगी तू?
0: अरे हम तो जानते थे एक भी पैसा न बचा होगा।
1: तू नहीं जानती नारायणी, वो दोनों शैतान झूठी गवाही देने के लिए बदनाम हो चुके हैं।
0: हाँ अच्छा चल छोड़ उन दोनों को, अपने मतलब की बात सुन।
1: हाँ सुन ही तो रही हूँ तुम्हारी बात।
0: सुनने में आया है कि राय बरेली शहर में कोई लाडी कारपेट और कास आयरन कंपनी आई है, कंपनी वाले जगदीशपुर में कैंप बना कर रहेंगे। अरे तुझे वहाँ सफाई का काम मिल जाएगा।
1: अच्छा तुम्हें कैसे पता काकी?
0: यूनियन का एक आदमी मिला था हमको, वो कह रहा था कि पक्का मकान बनने तक अफसर लोग तंबू में ही रहेंगे।
1: लेकिन काकी कोई हमें काम क्यों देगा, हमें तो कोई जानता तक नहीं है।
0: अरे भगवान से दुआ कर सब ठीक हो जाएगा, तो दुआ कर।

0: अरे उधर देख, मदन भैया उधर देख, एक रोटी के लिए चार कुत्ते आपस में किस तरह लड़ रहे हैं।
1: रोटी? हाँ, रोटी ही तो है वो। बामो भैया, क्यों ना मैं कुत्तों से रोटी छीन लूं।
0: अब मरना है क्या? देखा नहीं कितने खतरनाक कुत्ते हैं, काट लिया तो पेट में ये बड़ी बड़ी सुइयां लगानी पड़ेंगी।
1: सुइयां तो तब लगेगी ना जब मैं जिंदा रहूंगा, भूख से तो वैसे ही एक दो दिन में मर जाऊंगा बाबू भैया। हतमरा तो मैं पहले ही हो रहा हूँ, कब कश खाकर गिर पड़ूं पता नहीं।
0: ना बाबा ना, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है।
1: तो ठीक है, तुम यही खड़े रहो। हाँ, मैं कुत्ते के मुंह से रोटी छीन कर लाता हूँ।
0: भूखे कुत्तों के मुंह से भला आज तक कोई रोटी छीन सका?
1: कुत्ते ही तो है ना, शेर तो नहीं। फिर भूखा इंसान तो शेर के मुंह का शिकार छीन लाता है। मैं तो चलता हूँ।
0: अरे अरे सुन तो, मदन मदन, अरे कहाँ जा रहा?

लगता है कुत्ते ने उसे जान से मार डाला। अरे अरे अरे ये कुत्ते तो भाग गए रोटी भी ले गए। इसको जाकर देखता हूँ।

0: शेर तो नहीं, फिर भूखा इंसान तो शेर के मुंह का शिकार छीन लाता है। मैं तो चलता हूँ।
1: अरे अरे अरे सुन तो, मदन मदन, अरे कहाँ जा रहा है? अरे इधर आ जा, बहुत जल्दी कुत्ते
2: अरे ये कुत्ते तो भाग गए, रोटी भी ले गए। इसको जाकर देखता हूँ। मदन, अरे मदन मदन, ये हिल डुल क्यों नहीं रहा? मदन।

0: मैं कालू राम यूनियन का सचिव।
1: तुम मेरे पास क्यों आए हो?
0: मैं अरे मुझसे तुम्हारी दुर्दशा देखी नहीं जाती। ये दूध मुहा बच्चा, बीमार पति और उस पर तेरी गरीबी, हाय हाय हाय। हरि नारायणी, मैं तो तेरी मदद करना चाहता हूँ। मदद?
1: कैसी मदद कालू राम?
0: अरे क्या बसुमती ने नहीं

0: अरे बोला नारायणी, बता मैं ठाकुर साहब को क्या जवाब दूं? बोल बोल बोल बोल बोल।
1: कालूराम, पहले तुम मुझे ये बताओ कि यूनियन के सचिव होकर तुम ठाकुर साहब का साथ क्यों दे रहे हो?
0: हरी नारायण, छोड़ इस बात को, ये अंदर की बात है। हाँ, अंदर की बात, तू अपनी बात बता। ठाकुर साहब ने विशेष रूप से मुझे तुम्हारे पास भेजा है।
1: मुझे सोचने के लिए समय चाहिए।
0: समय चाहिए, ठीक है। तो मैं दो दिन बाद फिर आऊंगा।
1: नहीं नहीं, तुम मत आना, मैं खुद आऊंगी।
0: खुद आएगी?
1: हाँ,
0: ठीक है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, ठीक है।
1: हाँ ठीक है।
0: अच्छा।
2: छिपाई क्यों बैठा? अब चल, जलूस में हमारे साथ चल।
3: नहीं जाना मुझे जुलूस में, नहीं शामिल होना इस हड़ताल में। मुझे बेहद हालत पर अकेला छोड़ दो।
2: तू रो रहा है भिगू? अरे क्या हुआ तुझे? देख भिगू, मैं तेरे भाई जैसा हूँ, मुझे बता क्या बात है।
3: मैं बर्बाद हो गया यशवंत, मैं बर्बाद हो गया।
2: क्या?
3: मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई।
2: देख तू रो मत, चुप हो जा। जो भी बात है, मैं तेरे भाई जैसा हूँ, तू मुझे साफ साफ बता।
3: पार्वती?
2: हाँ हाँ, क्या हुआ पार्वती को?
3: पार्वती मेरे मुंह पर काली पोत कर भाग गई।
2: क्या?

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार की 11वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओमकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभयारण्य जाएंगी। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो सकता है। करीब 15 दिन तक चलने वाले इस सत्र में सदन की 10 से 12 बैठकें प्रस्तावित हैं। विधानसभा सचिवालय ने सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेज दिया है। 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान और नौवे महासचिव एंटोनियो गुतरस का कार्यकाल इस साल के अंत में समाप्त हो जाएगा। अगले वर्ष 1 जनवरी को नए संयुक्त राष्ट्र महासचिव अपना पदभार ग्रहण करेंगे। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब दावे आपत्ति 25 जून तक लिए जाएंगे और इनका निराकरण 2 जुलाई तक किया जाएगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 27 जुलाई को किया जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ाए गए दान और कीमती सामान के दुरुपयोग के आरोप में राज्य सरकार ने एसआईटी गठित की है। साथ ही 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। और महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में कल

0: भारत का सामना जर्मनी से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की है।

स्वागत है आप सभी प्यारी प्यारी सखियों का आपके अपने मन पसंद कार्यक्रम महिला सभा में। आज आपके साथ हूँ मैं दीपलक्ष्मी त्रिपाठी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत महंगा सौदा करती है ये जिंदगी, बहुत महंगा सौदा करती है ये जिंदगी। एक नौकरी के चक्कर में गांव, घर, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त सबको छोड़ना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है सखियों, घर चलाने के लिए दूर शहर या विदेश में काम करने वाला इंसान सिर्फ पैसा नहीं भेजता, वो अपनी खुशियां, आराम और परिवार के लिए सपने भी भेजता है। घर से दूर रहना कोई शौक नहीं, बल्कि अक्सर एक मजबूरी या बेहतर भविष्य की तलाश होती है। चाहे वह देश के भीतर किसी दूसरे शहर में रहने वाले लोग हों या सात समंदर पार विदेशों में बसे प्रवासी, अपने माता पिता, जीवन साथी और बच्चों से दूर रहने का दर्द वही समझ सकते हैं जो इसे जीते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस इसी संघर्ष को सम्मान देने का माध्यम है। जी हाँ सखियों, हर साल 16 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, जो अपने घर परिवार से दूर रहकर काम करने वाले प्रवासियों के त्याग और उनके द्वारा भेजे जाने वाले धन के महत्व को समर्पित है। कई माता पिता बच्चों की पढ़ाई इसी पैसे से करवाते हैं, घर का खर्च चलता है, इलाज होता है और सपनों को सहारा मिलता है। लेकिन इस पैसे के पीछे एक अलग कहानी भी होती है, परिवार से दूरी, त्योहारों में अकेलापन और लगातार मेहनत। फिर भी लोग मुस्कुरा कर काम करते हैं ताकि उनके अपने खुश रह सकें। हर भेजा गया रुपया सिर्फ कमाई नहीं, परिवार के लिए प्यार और जिम्मेदारी की पहचान होता है। दूरी चाहे कितनी भी हो, परिवार के लिए किया गया प्रयास दिलों को जोड़े रखता है। एक प्रवासी का जीवन बाहर से जितना चकाचौंध भरा दिखता है, भीतर से वह उतना ही एकाकी और संघर्षपूर्ण होता है। त्योहारों, शादियों या किसी बीमारी के समय घर से दूर रहने की टीस सबसे ज्यादा महसूस होती है। अपनों के बिना हर उत्सव

0: आपका बिजनेस करने का सपना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पैसा और लोन का है, तो यह जानकारी आप सभी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री योजना स्टैंड अप इंडिया मिशन की। हमारी कई सखियां हैं जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, लेकिन कैपिटल और फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी उनके कदम रोक देती है। तो इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया मिशन शुरू किया। इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं को स्वरोजगार और बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस मिशन के तहत बैंक लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। यह लोन मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, ट्रेडिंग बिजनेस जैसी क्षेत्रों में नया उद्योग शुरू करने के लिए दिया जाता है। योजना का मकसद सिर्फ लोन देना नहीं, बल्कि लोगों को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने के लिए प्रेरित करना भी है। अगर कोई महिला अपना बुटीक, फूड बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट या ब्यूटी पार्लर या सलून या कोई उद्योग शुरू करना चाहती है, तो यह योजना उसके लिए मददगार हो सकती है। आवेदन के लिए पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी बैंक या आधिकारिक पोर्टल से ली जा सकती है। याद रखिए, कई बड़े बिजनेस भी एक छोटे कदम और सही अवसर से शुरू हुए थे। और अगर आप कभी बिजनेस शुरू करने का सपना है, तो योजनाओं की जानकारी जरूर लें और आगे बढ़ें। याद रखिए, सपनों की उड़ान तभी मिलती है जब हौसलों के साथ सही जानकारी भी हो। और हाँ, उड़ान से याद आया कि अब वक्त है मेरी उड़ान क्रम का, तो सुनते हैं मेरी उड़ान। सखियों, योगा के प्रति पूरी दुनिया में लोगों की जागरूकता बढ़ी है। आज के समय में खुद को सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखने के लिए लोग योगा का सहारा ले रहे हैं। शायद इसीलिए योगा के क्षेत्र में बहुत ही सुनहरा अवसर है आप सभी महिलाओं के लिए। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर माया खिलावदिया, जो कि एक योगा टीचर, योगा इंस्ट्रक्टर हैं। माया जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: माया जी, हमारी सखियों

0: को आप बताइए कुछ अपने बारे में।
1: मेरा नाम डॉक्टर माया खिलावदिया है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज में योग डिपार्टमेंट में पढ़ाती हूँ 4 वर्षों से। मेरा पर्सनल योगा सेंटर है, पर्सनल होम विजिट भी लेती हूँ, एक योगा थेरेपिस्ट हूँ।
0: तो मैम आप कितने साल से इस प्रोफेशन में हैं?
1: वैसे तो मैं 2009 से सबसे पहली बार योग को मैंने जाना कि योग क्या है। उसके बाद से लगातार आज तक योग के पद पर कार्य कर रही हूँ। जब मैंने योग को समझा कि योग क्या है, कि योग मुझे ऐसा लगता था सिर्फ आसन वगैरह ही, पर श्वास पर ध्यान लगाकर करा तो मैंने अपने अंदर के हार्ट बीट को सुना तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये इंटरनल जो शांति प्रदान करने वाली जो सुख की अनुभूति होती है, योग कर कर अनुभव किया।
0: मैम इतने टाइम से आप योग सिखा रही हैं लोगों को, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अभी तक का?
1: कई अलग अलग पेशेंट आए, कई स्वस्थ व्यक्ति आए, कई अस्वस्थ व्यक्ति आए। ये चेक करा कि इस संसार में पूर्ण रूप से कोई स्वस्थ नहीं है। आजकल वैसे देखा जाए तो लैपटॉप और मोबाइल की वजह से सर्वाइकल ज्यादा हो रहा है। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी उठे कि पर क्या हो रहा है, जल्दी कोई भी नहीं उठना चाहता है। जो ज्यादा बिजी है वो तो यही कर रहा है कि समय के आधे घंटे पूरे होके फटाफट तैयार होके अपने जॉब पे जाना चाहता है, तो उससे भी मेंटल हेल्थ पे आपको इफेक्ट पड़ेगा, आप अस्वस्थ रहेंगे। आप
0: बिल्कुल
1: जितना थोड़ा जल्दी उठेंगे, आप रिलैक्स होके हर कार्य को करेंगे तो आप
0: जी
1: ज्यादा
0: जी
1: से ज्यादा स्वस्थ रहेंगे।
0: मैम, हम सभी जानते ही हैं कि योगा हमें इंटरनली मतलब अंदर से कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाता है। बहुत सी हमारी महिलाएं हैं जो अपना वेट लॉस करने के लिए जिम भी जाती हैं, वर्कआउट करती हैं, तो योगा इस में क्या हेल्प कर सकता है? मतलब योगा से आंतरिक जो शक्ति वो तो मिलती है, बाहरी तौर पर योगा किस तरीके से काम करता है?
1: जब हम योग को करते हैं तो आप एक मान लिया कि आप जिम जा रहे, आपको जिम कैसा फायदा करेगा? सिर्फ शारीरिक रूप से ज्यादा फायदा करेगा, आपको मेंटली इतना फायदा नहीं करेगा। आप योग करते हैं शारीरिक रूप से फायदा करने के अलावा मानसिक रूप से ज्यादा फायदा करेगा। क्यों करेगा? जब हम जब योग आसन करते हैं तो हमें कष्ट नहीं होता है। हमारे पतंजलि ने कहा है कि आपको जब भी कोई आसन करना है तो स्थिर सूक्ष्मासन के रूप में करना है, मतलब स्थिर अवस्था में आपको करना है कि
0: जी
1: आपको कोई भी आप आसन कर रहे हैं तो कष्ट न हो, जिसमें
0: जी
1: आपको सुख की अनुभूति हो रही है वह आसन आप करें। स्वस्थ
0: किस तरह के आपके पास क्लाइंट आते हैं?
1: व्यक्ति भी आते हैं, अस्वस्थ व्यक्ति भी आते हैं वेट कम करने के लिए, पर हम स्वस्थ व्यक्ति को ज्यादा अच्छे से रिजल्ट दे पाते हैं क्योंकि तो वो ज्यादा अच्छे से आसन कर लेंगे, क्योंकि उनको हर टाइप का हम आसन करवा सकते हैं।
0: जी
1: और
0: जी
1: अस्वस्थ व्यक्ति को सावधानी पूर्वक आसन करवाने पड़ेंगे, क्योंकि
0: जी जी
1: कुछ आसन ऐसे रहते हैं, मान लिया कि सर्वाइकल है तो गर्दन नहीं झुकाना है, तो फिर कुछ आसन ऐसे रहते आप सूर्य नमस्कार ही करना है मान लीजिए, तब उसमें तो बहुत सारे पोस्चर ऐसे हैं कि आपको गर्दन नीचे करना ही पड़ेगी। तो हमें बस थोड़ा सा यह ध्यान में रखना पड़ता है कि आपके पास जो भी व्यक्ति आ रहा है इस बीमारी का, तो उसको कौन से आसन करवाना है और कौन से आसन नहीं करवाना है।
0: मतलब बहुत ही सावधानी पूर्वक करवाना पड़ता है। तो कहाँ से कैसे सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह कुछ होते होंगे? क्या इनिशियल लेवल पे क्या करना चाहिए?
1: सर्टिफिकेट कोर्स तो वैसे कई संस्थाएं करा रही है, स्कूल कॉलेज वगैरह कई जगहों पे सर्टिफिकेट कोर्स होता है। आपको सिर्फ नॉलेज बढ़ाना है तो आप सर्टिफिकेट कोर्स करें, और आपको अगर कहीं किसी पोस्ट पर जैसे स्कूल में जॉब करना है, कॉलेज में जॉब करना है, तो उसके लिए आपको डिग्री करना पड़ेगी, जैसे डिप्लोमा है, मास्टर डिग्री है।
0: तो ये कितने साल के कोर्सेज होते हैं?
1: डिप्लोमा 1 साल का होता है,
0: अच्छा
1: मास्टर डिग्री आपकी 2 साल की होती है सेमेस्टर के अकॉर्डिंग।
0: अच्छा मैम एक चीज मैं और जानना चाहूंगी कि लगभग कितना इन्वेस्टमेंट होता है जब भी हम कोई क्लासेस शुरू करते हैं या सेंटर स्टार्ट करते हैं? इनिशियल लेवल पे कितना इन्वेस्टमेंट होता है?
1: यदि आप योग का सेंटर खोलना चाहते हैं तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आपके स्वयं की प्लेस हो तो ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि तो आपको रेंट नहीं लगेगा, और प्लेस भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ खिड़की हो, कमरे हो, जहाँ से हवा अच्छे से आ रही है,
0: जी
1: ऐसी प्लेस होना चाहिए योगा के लिए। मौसम के अकॉर्डिंग आप टेरेस पे भी शुरू कर सकते हैं, गार्डन में भी कर सकते हैं।
0: मैम काफी सारी चीजें हमने आपसे जानी कि योगा को एज अ प्रोफेशन हम कैसे कर सकते हैं, और हम अपने घर से ही टेरिस से शुरुआत कर सकते हैं या किसी गार्डन से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कोई महिला अगर घर के बाहर नहीं जा सकती तो ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकती हैं।
1: महिलाओं के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वह घर बैठे भी यह विधा को सिखा सकती है।
0: जी आखिरी में हमारी सखियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
1: मैं यही सखियों से कहना चाहूंगी कि वह एक अच्छी योगा टीचर बनकर सबसे पहले तो स्वयं योग करें, क्योंकि जब तक हम स्वयं योग नहीं करेंगे, उसका अनुभव नहीं करेंगे, तो हम सामने वालों को कैसे करवाएंगे। इसलिए सबसे पहले स्वयं योग

0: घर में सभी की आदत डालें कि भाई आप भी योग करें, परिवार में योग की आदत डालें, समाज को योग के प्रति जागरूक करें। योग की विधा को अपनाकर आप सबसे अच्छा आय का साधन अपना सकती है। हम खुद तो स्वस्थ रहेंगे और सामने वालों को भी स्वस्थ करेंगे।
1: बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके कि योगा एक ऐसी चीज़ है जिससे हम खुद को स्वस्थ रख ही सकते हैं और साथ में हम दूसरों को भी स्वस्थ बना सकते हैं और कहीं ना कहीं अपनी आय का जरिया भी इसको बना सकते हैं। हमारी सखियों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

और सखियों, अब बारी है रूप लावण्य की। आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है और गर्मियों में होने वाली टैनिंग को कम करने के लिए महंगे पार्लर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। दही, बेसन, टमाटर और शहद, नींबू जैसी किचन की चीजें स्किन को साफ कर सकती हैं और नेचुरल ग्लो देने में भी मदद कर सकती हैं। सही तरीके से नियमित उपयोग करने पर ये घरेलू उपाय स्किन को फ्रेश और चमकदार बना सकते हैं, क्योंकि दही और बेसन त्वचा की देखभाल के लिए लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा रहे घरेलू

नुस्खों में से है। इन दोनों को मिलाकर चेहरे पर लगाया जाता है तो यह स्किन की टैनिंग साफ करता है और चेहरे पर ग्लो लाता है। वही बात करें अगर टमाटर के रस की, तो टमाटर को स्किन के लिए एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट की तरह माना गया है। इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं और डलनेस को कम करते हैं। और सखियो, शहद जो कि स्किन को मॉइस्चराइज करता है और उसे सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है, जबकि नींबू में मौजूद प्राकृतिक एसिड त्वचा की सफाई और टोन को सुधारने में सहायक माने जाते हैं। और जब इन दोनों को मिलाकर चेहरे पर लगाया जाता है तो यह डल स्किन को रिफ्रेश करने और हल्की टैनिंग को कम करने में मदद कर सकता है। साथ ही सखियो, स्किन टैनिंग को हटाने के लिए सिर्फ घरेलू उपाय ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की स्किन केयर भी उतनी ही जरूरी है। धूप में निकलते समय सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, पर्याप्त पानी पीना और चेहरे की नियमित सफाई त्वचा की टैनिंग से बचाने में मदद करता है।

में जाओ तो चारों तरफ आम ही आम दिखाई दे रहा है। आम तो वैसे भी फलों का राजा है और इसको सभी पसंद करते हैं, लेकिन आपको पता ही होगा कि आम से कई सारी स्वादिष्ट और ताजा रेसिपीज बनाई जा सकती हैं। जी हाँ, सबसे लोकप्रिय और झटपट बनने वाली रेसिपी है मैंगो मलाई कुल्फी। आज के फूड जोन क्रम में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैंगो मलाई कुल्फी की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए झटपट से लिख लीजिए सामग्री को। मैंगो मलाई कुल्फी बनाने के लिए आपको चाहिए पके और मीठे आम, जिनको आप बारीक काट लें या फिर प्यूरी बना लें। साथ ही चाहिए फुल क्रीम दूध 1 लीटर, चीनी 4 से 5 बड़े चम्मच, कटे हुए मेवे, काजू, बादाम और पिस्ता, इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। और आप जानते हैं इसको बनाना कैसे है, जो कि बहुत ही आसान है। एक पैन में दूध उबालें और उसे तब तक पकाएं जब तक वह आधा न रह जाए, यानी कि गाढ़ी रबड़ी जैसी कंसिस्टेंसी कर लेनी है। अब इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालें, दूध को पूरी तरह ठंडा होने दें और जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें आम की प्यूरी, कटे हुए मेवे मिला दें। इस मिक्सचर को कुल्फी मोल्ड्स या छोटी कटोरियों में डालें, ऊपर से थोड़े मेवे डालें और इसे फॉइल पेपर से कवर करके 8-10 घंटे के लिए फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। लीजिए, तैयार है मैंगो मलाई कुल्फी। कितनी आसान और इतनी टेस्टी कि बस बच्चे तो खुश ही हो जाएंगे। तो सखियों, आप ट्राई कीजिए मैंगो मलाई कुल्फी और मैं सुनवाती हूँ आपको ये प्यारा सा गीत। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, ये बात समझ में आ रही है कि खुशी का मतलब बस एक शांत सुबह, अच्छी हेल्थ, टाइम पर भरे हुए बिल और एक सुरक्षित घर और फालतू झगड़ा ना करने वाले लोग होते हैं। वक्त हो रहा है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आपको बता दे सखियो, इस कार्यक्रम का संयोजन था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार का। तो अब दे अनुमति अपनी सखी दीपलक्ष्मी त्रिपाठी को।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज कलाकार हैं मुकेश राठौर और साथी इनके गाए लोकगीत आज आप सुनेंगे। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की है।

मुकेश राठौर और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सुजाता वैशंपायन की गाए कुछ भजन। आरंभ कर रहे हैं मीरा की इस रचना के साथ। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की है।

0: कबीर की रचना भी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे सुजाता वैशंपायन के गाए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की थी। अब समय है एक अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

कयामत से कयामत तक फिल्म का ये गीत है, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़। मजरू ने गीत लिखा है, आनंद मिलिंद ने धुन बनाई है।

0: अलका याग्निक और उदित नारायण के गाए फिल्म कयामत से कयामत तक के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओमकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभयारण्य जाएंगी। वे 20 जून को शाम करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगी। इस दौरान वे दो प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगी। श्रीमती मुर्मू 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित मुख्य योग कार्यक्रम में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में हो रही कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिया जा सकता है। बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दों में स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति 2026 को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। साथ ही तबादला अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। MyGov पोस्ट में पिछले 12 वर्षों में देश के बुनियादी ढांचे में आए बदलावों का उल्लेख किया गया है। इन बदलावों से आवाजाही तेज हुई है, लॉजिस्टिक्स को मजबूती मिली है और विकास के नए मार्ग खुले हैं। पोस्ट में कहा गया है कि बेहतर संपर्क सुविधाओं से दूरियां कम होने के साथ साथ अवसरों में वृद्धि और समृद्ध भारत की नींव मजबूत हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों और सांदीपनी विद्यालयों में आज से 30 जून 2026 तक स्कूल चलें अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत शाला प्रारंभ उत्सव आयोजित किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्री प्राइमरी से 8वीं तक के स्कूलों में बाल सभा के आयोजन के साथ ही पहले दिन विशेष भोज का आयोजन होगा। इसके साथ ही शाला में शत प्रतिशत नामांकन, पुस्तक वितरण, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, क्रियाशील बालिका शौचालयों की उपलब्धता, पेयजल की उपलब्धता, अभिभावकों का शाला से जुड़ाव जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा शुरू होने के 24 घंटे के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्रक डाउनलोड कर लिए हैं। एजेंसी ने कहा है कि सभी उम्मीदवारों के लिए सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उसकी टीमें सर्वरों पर लोड की लगातार निगरानी कर रही है। वही 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा है कि यह प्रतिबंध नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का मानना है कि मॉनसून के आने के बाद प्रदेश में बारिश की स्थिति में सुधार होगा। फिलहाल जून माह में प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। प्री मॉनसूनी गतिविधियों के चलते आज भोपाल, ग्वालियर, मई, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर और शहडोल संभागों के 30 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय में समान नागरिक संहिता के संबंध में जन परामर्श को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आगरमालवा जिला जेल और सुसनेर उप जेल में कल से 21 जून तक साप्ताहिक योग प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। नर्मदापुरम जिले की जनपद पंचायत बनखेड़ी क्षेत्र में 12 से 18 जून तक जन कल्याण शिविर लगाए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र हितग्राहियों को उनका लाभ दिलाना और लंबित समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
1: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
0: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
1: बिल्कुल जागृति, देखिए, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
0: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक फिबाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
3: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का ये कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
0: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर माईगॉव की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

0: वाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
1: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। AIR चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हरा कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारस मणि वाघ, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल की। ग्राम चौहल्दा बागपत से संजय ढिंगनिया, नमन मुस्कान और कुणाल की। राजा बाजार बिहिया से सुरेश केसरी, पूनम केशरी और प्रतीक केशरी। नया बाजार बक्सर से राजेश केशरी, पंकज केशरी और रोहन केशरी। रामलखन फिल्म का गीत मनहर उदास और अनुराधा पोडवाल ने गाया है। आनंद बख्शी की गीत रचना है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा, गांव भड़भुंजी, जिला आगर, मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय, भंवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला, मिलन, आयुष और ओम प्रकाश की पसंद है। धीसु दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे, कंवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली। सुनना पसंद किया है तेजाब फिल्म का गीत, अनुराधा पोडवाल और अमित कुमार का गाया, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अगले गीत का अनुरोध हमें मिला है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया की। अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्ल राम, पूरन रोहित, छोटू, डुंडुन और उनके परिवार के सदस्य। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश।

वर्मा, करुणा वर्मा, दत्रेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू की, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक की। लाल दुबट्टा मलमल का फिल्म का नाम है। आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिखा, गाया है उदित नारायण और अनुराधा पोडवाल ने।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं सुंदरखेड़, राजमाता नगर, बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार की। ग्राम बगबुड़वा पथरिया सा नरेन नेताम और कुसुम नेताम की। अनुरोध करता है गौरी नगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले की। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की। हुकुम कर्मकर, सुनीता कर्मरकर, हार्दिक कर्मरकर, प्राची कर्मरकर, तनु कर्मरकर की पसंद। ये खत है सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा की। सुनना पसंद किया है वारिस फिल्म का गीत, लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर का गाया, वर्मा मलिक ने गीत लिखा है, उत्तम जगदीश ने धुन बनाई है।

0: वारिस फिल्म के इसी गीत को सुनना पसंद किया था शुभचंद बजाज कालका हरियाणा से और मोहाली पंजाब से टीडी मल्होत्रा ने। वारिस फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर माई गव की एक पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे इंदौर बैतूल ओंकारेश्वर जबलपुर ग्वालियर और कुनो अभयारण्य जाएंगी। वे 20 जून को शाम करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे दो प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में हो रही कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा सकता है। बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दों में स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति 2026 को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। साथ ही तबादला अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्रक डाउनलोड करने की सुविधा शुरू होने के 24 घंटे के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्रक डाउनलोड कर लिए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। और मौसम विभाग ने प्रदेश के दक्षिण पश्चिम मानसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेब पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको सांध्यकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की होगी। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे शाम 6:00। रात्रि 8:00 समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष के अंतर्गत आज आप सुनेंगे आतंकवाद। उर्दू प्रोग्राम कहकशा रात्रि 9:30 पर

इसके अंतर्गत आज होगा आबशारे गजल। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा रूपाली पांडे का ध्रुपद गायन, राग होगा जोग। आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण होगा। इसके अंतर्गत कुलदीप शर्मा से ली गई भेंटवार्ता आप सुनेंगे। विषय होगा खरीफ फसलों की तैयारी और बीजोपचार। ये थी सांध्यकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर हम आकाशवाणी के। इस समय दोपहर के 3:02 होने वाले हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा समाप्त होती है। शाम 5:00 हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच DTH पर हमारा प्रसारण जारी है। DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है

दोस्तों कहते हैं घर से दूर जाना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो अपनों के लिए देखे जाते हैं। कोई शहर बदलता है तो कोई देश, पर हर महीने घर पहुंचने वाली मेहनत की कमाई कई बड़े सपनों को जिंदा रखती है। जी हाँ दोस्तों, दूरियां सिर्फ जगहों की होती है, दिलों की नहीं। घर से दूर रहकर काम करने वाला हर युवा अपने सपनों के साथ साथ अपने परिवार की उम्मीदों को भी साथ लेकर चलता है। उसकी कमाई जब घर पहुंचती है ना, तो वो सिर्फ पैसे नहीं होते, बल्कि माता पिता के चेहरे की मुस्कान, बच्चों की पढ़ाई और परिवार के बेहतर भविष्य का सहारा बन जाती है। इसी भावना को सम्मान देने के लिए हर वर्ष 16 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। रेमिटेंस यानी अपने परिवार के लिए पैसे भेजना। दुनिया भर में लाखों लोग रोजगार, शिक्षा और बेहतर अवसरों की तलाश में अपने घरों से दूर रहते हैं और अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा अपने परिवार तक पहुंचाते हैं। यही मदद किसी बच्चे की पढ़ाई, किसी बुजुर्ग के इलाज, किसी छोटे काम और परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों का सहारा बनती है। साथियों, इस वर्ष की थीम है रिमिटेंसेस फॉर रूरल रिजिलियंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी पारिवारिक सहयोग के जरिए गाँव को मजबूत बनाना, नए कामों को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर बढ़ाना। आज का युवा सिर्फ अपना भविष्य नहीं बना रहे, बल्कि अपने परिवार और समाज की तरक्की में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अपनों के लिए किया गया हर छोटा प्रयास कई बड़े सपनों को सच कर सकता है, क्योंकि अपनों के लिए भेजी गई हर छोटी सी मदद सिर्फ जरूरतें ही पूरी नहीं करती, बल्कि सपनों को उड़ान भी देती है। इसी सोच और अपनेपन के साथ मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस। तो दोस्तों, बातों का यह सिलसिला थोड़ी देर के लिए यहीं थामते हैं और सुरों की दुनिया में एक बार फिर से दस्तक देते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फिल्मी गीत, फिल्म दे दनादन से राहत फतेह अली खान की आवाज में।

दोस्तों कहते हैं सफर की असली खूबसूरती सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं होती, बल्कि उस सफर को समझदारी से तय करने में होती है। जरा सी सावधानी जहां जीवन को सुरक्षित बनाती है, वहीं छोटी छोटी अच्छी आदतें समय पर पैसे और ईंधन तीनों की बचत कर सकती है। दोस्तों आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वाहन हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुके हैं, लेकिन बढ़ती ईंधन की खपत और प्रदूषण हमारे सामने एक बड़ी चुनौती भी है। ऐसे में स्मार्ट ड्राइविंग केवल एक अच्छी आदत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जो हमारी जेब, हमारे पर्यावरण और हमारे भविष्य तीनों से जुड़ी हुई है। स्मार्ट ड्राइविंग का मतलब है जल्दबाजी नहीं, समझदारी। अक्सर हम तेज रफ्तार, बार बार ब्रेक लगाने या बिना जरूरत वाहन चालू रखने जैसी आदतों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यही छोटी छोटी बातें ईंधन की खपत बढ़ा देती हैं। वहीं अगर हम बात करें तो दोस्तों वाहन की समय पर सर्विस, सही हवा वाले टायर और संतुलित गति से चलने जैसी आदतें ईंधन की बचत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इतना ही नहीं, छोटी दूरी के लिए पैदल चलना या फिर साइकिल का उपयोग करना और एक ही दिशा में जाने पर कार पुलिंग या सार्वजनिक परिवहन को अपनाना भी एक समझदारी भरा कदम है। इससे न केवल ईंधन की बचत होती है बल्कि सड़क पर वाहनों की भीड़ और प्रदूषण भी कम होता है, क्योंकि दोस्तों आज का युवा बदलाव की ताकत रखता है और उसकी छोटी छोटी अच्छी आदतें समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। स्मार्ट ड्राइविंग अपनाकर हम न केवल अपने खर्च को कम कर सकते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, क्योंकि समझदारी से किया गया हर सफर सिर्फ ईंधन की बचत नहीं करता बल्कि एक सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर भविष्य की राह भी बनाता है। इसीलिए सुरक्षित चलें, स्मार्ट चलें और अपने साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर कल का निर्माण करें। तो चलिए दोस्तों अब सुनते हैं फिल्म संगीत में अगला फिल्मी गीत फिल्म कलंक से। इस गीत में स्वर है अरिजीत सिंह के, इस गीत के संगीतकार हैं प्रीतम।

दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज की रोजगार सूचना का। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के 4,500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियाएं 12 जून 2026 से शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। योग्यता है उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएट होना जरूरी है। आप और अधिक जानकारी के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की रोजगार सूचना। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत फिल्म बागी 2 से, जुबिन नौटियाल की।

दोस्तों, यूं ही मन में ख्याल आया कि जून के महीने के इस मौसम की थोड़ी सी बात कर ली जाए। जून के महीने की शामों का अपना ही रंग होता है। दिन भर की धूप के बाद चलती हल्की हवाएं और आसमान में बिखरे बादल मन को एक अलग सा सुकून दे जाते हैं। और साथियों, सच में ऐसे ही छोटे छोटे मौसमी रंग हमारी शामों को और भी खूबसूरत बना देते हैं। अब दोस्तों देखिए ना, आपसे बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। हमें उम्मीद है आज के इस कार्यक्रम में आपको हमारी बातें पसंद आई होंगी। अब चलते चलते सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म मौसम से राहत फतेह अली खान की आवाज में।

दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। अब मुझे अपनी रेडियो दोस्त महिमा सक्सेना को दीजिए इजाजत, और चलते चलते आपको एक आखिरी गीत सुन पाते हैं।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर।
1: मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

सबसे पहले सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति, मनहर और सुखविंदर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है सौदागर।

फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। और आज इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं एक बार फिर आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को, जिसकी तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आवाज लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम है रामलखन।

मिस्टर इंडिया इस फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे किशोर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।
1: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
2: डीडी डायरेक्ट
1: निशुल्क न केबल का झंझट न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
2: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
1: स्पष्ट आवाज सुंदर तस्वीर
2: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
1: आज ही करें कनेक्ट
2: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी।

मंच है। ये युवाओं में नेतृत्व, कर्तव्य बोध, तार्किक सोच और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने जैसे मूल्यों को विकसित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभयारण्य जाएंगे। वे 20 जून को शाम करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे 2 प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्रक डाउनलोड करने की सुविधा शुरू होने के 24 घंटे के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्रक डाउनलोड कर लिए हैं और मौसम विभाग ने प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। इस बीच शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने के लिए काम किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुँचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी सुबह की कार्य बैठक में G7 नेताओं के साथ शामिल हुए, लेकिन वार्ता जल्दी समाप्त हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान यस बैंक के ऋणों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनके निदेशकों और कर्मचारियों के साथ साथ यस बैंक के पूर्व कर्मचारी के परिसर की तलाशी ली। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय

जी हाँ, ये सफर है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल का 100.1 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पर, जिसे आप सुनते हैं। और आज आकाशवाणी गोल्ड के इस सफर में आपका हम सफर हूँ मैं सुनील। शाम के 6:11:15 हो चुके हैं और सदाबहार गीतों के सफर के साथ आपके भी घर तक का जो सफर शुरू हो चुका है, आपके कार्यस्थल से लेकर आपके घर तक का, उस सफर में हम रहते हैं आपके हम सफर। और इस सफर में आप क्या कुछ अनुभव करते हैं इन गीतों को सुनकर, ये तो आप ही जानते हैं, आपका दिल ही जानता है।

या शाम का ये आलम है और शोक नजर की इन बिजलियों से जरा बचकर, क्योंकि कहा गया है कि जुबान से कुछ कहना और जुबान से कुछ न कहना और सब कुछ कह जाना, जुबान से कुछ न कहना और सब कुछ कह जाना बड़ा मुश्किल है, नजरों की नदाओं को समझ पाना। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम में आज आपके साथ हूं मैं सुनील, और पूरी कोशिश हमारी ये रहती है कि आपके जो सफर है, आपके घर तक का जो सफर है शाम के इस आलम में, उसमें आपके हम कदम हम चलते रहें और आपको हिदायत देते रहें। क्योंकि रोड पर जब हम चलते हैं तो कई मरतबा ऐसा होता है सबको जल्दी होती है जाने की, ऐसे में थोड़ा सा दिल थाम के चलिए जनाब, क्योंकि ये सफर जो है ये बहुत खुशगवार होना चाहिए।

तो साहब आप भी दिल थाम के जरा घर तक पहुंचिए, और हमारा जो समय है फिलहाल यहाँ पर ये आगाह हमें कर रहा है कि अब संस्कृत में समाचारों का समय हो चला है। तो हम बढ़ते हैं समाचारों की ओर और आप पढ़िए अपने घर की ओर। लेकिन आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल का साथ हरगिज़ हरगिज़ ना छोड़िएगा।

ऋतुविभागस्य अनुसारेण अद्य दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र स्थलेषु मेघगर्जनेन सह वृष्टिः विद्युत च संभाव्यते। अनेन सह प्रतिहोरा 50 किलोमीटर परिमित वेगेन प्रबल वायुश च संभाव्यते। जनाः आवश्यक जनसंचेतनाः पालयन्तु, ऋतुः विभागस्य निर्देशान् च अनुसरन्तु। इति वार्ताः।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं शैलेंद्र की आवाज में तराना फिल्म का गीत। गीत और लिखा है रविंद्र रावल ने और संगीत राम लक्ष्मण का है।

लता मंगेशकर की आवाज में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं नागिन फिल्म का गीत, जिसे लिखा है वर्मा मलिक ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं गुलशन बावरा का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई है आरडी बर्मन ने। आवाज आशा भोसले, आरडी बर्मन और साथियों की है और फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम।

आशा भोसले और आरडी बर्मन की आवाजों में गाए इस गीत के बाद अब सुनते हैं अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा ये गीत, जिसकी तर्ज बनाई है आरडी बर्मन ने और फिल्म है तेरी कसम।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने, और फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

0: तेरे घर के सामने फिल्म के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
2: आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।
1: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
2: ईडी डायरेक्ट
1: निशुल्क न केबल का झंझट न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
2: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
1: स्पष्ट आवाज सुंदर तस्वीर
2: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
1: आज ही करें कनेक्ट
2: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
0: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हां,

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की ये लगातार 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। एवियों में इस समय सम्मेलन का आउटरीच सत्र चल रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने का प्रयास किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जा रही सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी अब यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UGC परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता को बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेशों को भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। इसमें गांवों में अब कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट को वापस ले लिया गया है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकी कार्य है, जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर ही किया जाएगा। दार्जिलिंग के कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक

शासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री छाया श्रमिक योजना के अंतर्गत दार्जिलिंग पहाड़ियों और तराई डुअर्स क्षेत्र में बंद पड़े 25 चाय बागानों को फिर से खोलने के प्रयास किए जाएंगे। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनन से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि दक्षिणी लेबनन पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल इस समझौते को अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इसराइल की अपनी प्राथमिकताएं हैं और वो लेबनन में बफर जोन में तब तक बना रहेगा जब तक आवश्यक होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल होंगे आमने सामने। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए हमारी इस सभा के शेष और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। 7:21 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। रात 8 बजे आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष। आज का विषय है आतंकवाद। 8:35 पर होगा फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात 10 बजे भी। उर्दू कार्यक्रम कहकशा का समय है रात 9:30 का, और रात 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आज इसमें आप सुनेंगे रूपाली पांडे का ध्रुपद गायन राग।

ये थी जानकारी हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की। और अब सुनिए कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। कल हमारी सभा आरंभ होगी 5:53 पर। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम सुरुमई सवेरा आप सुनेंगे 8:30 पर। सुगम संगीत 9:15 पर होगा। कल आप सुनेंगे राजश्री बर्वे के गाए गीत और भजन। प्रदेश की सुर्खियों में सुना जा सकता है 9:30 पर। 10:00 आप तक पहुंचाई जाएगी जिले की चिट्ठी। महिला संसार कार्यक्रम होगा 10:05 पर। और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला के अंतर्गत कल आप सुनेंगे एस के दास गुप्ता का सरोद पर बजाया राग ललित। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण आरंभ होगा 11:00 से। और कल आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। कल दोपहर की सभा में आपकी फरमाइश कार्यक्रम होगा 12:00 और 2:30 पर। संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत जंग लगी तलवार इस रेडियो धारावाहिक की 12वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र के योगदान से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों में कल आप सुनेंगे दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, सुगम संगीत 1:45 पर और युवा साथियों का कार्यक्रम युवावाणी होगा शाम 5:02 पर।

मीडियम वे पर सांध्यकालीन सभा आरंभ करेंगे 5 बजे से। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 5:33 पर। कल शाम 6 बजे सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 8 बजे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष सुना जा सकता है और कल का विषय होगा नक्सलवाद। कल शाम 6:30 आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के मध्य लीड्स में खेले जाने वाले महिला टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल खेल की समाप्ति तक। अभी आप सुन रहे थे हमारी इस सभा के शेष और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
5: PLI है ना?
6: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कल नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा और प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने बताया कि प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जन कल्याण को बड़ी रफ्तार देते हुए कुल 24,200 करोड़ रूपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण सहित कुल 19,472,29,00,000 रूपये का पुनरीक्षित बजट स्वीकृत किया गया।
1: इंदौर की मेट्रो जिसकी लागत 2017 में 7,500 करोड़ का आकलन किया गया था, उसका पुनर्निरीक्षण अनुमान वो कुछ क्षेत्रों में मेट्रो का अलाइनमेंट बदला गया, कहीं पर उसको अंडरग्राउंड भी किया गया, तो अब वह 12,900 के करीब उसकी लागत हो चुकी है। तो यह अतिरिक्त 5,388 करोड़ की लागत की स्वीकृति दी गई और अब यह इंदौर की मेट्रो 31 किलोमीटर की करीब 2030-31 तक पूर्ण रूप से वहां पर परिचालन में आ जाएगी।
0: मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए रीवा, देवास और गुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आउटसोर्स मॉडल पर चलाने का पायलट प्रोजेक्ट भी मंजूर किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओमकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभ्यारण्य जाएंगी। वे 20 जून को शाम करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे दो प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्रीमती मुर्मू 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित मुख्य योग कार्यक्रम में शामिल होंगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार कल नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करना, स्वयं सेवकों की सहभागिता बढ़ाना और देश भर में नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्त मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहलों का भी अनावरण करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान के दौरान देश भर में जागरूकता और सामुदायिक जन सहभागिता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इनमें सामूहिक प्रतिज्ञा अभियान, जागरूकता रैलियां, साइकिल रैलियां, युवा नेतृत्व वाले अभियान, पोस्टर निर्माण, निबंध प्रतियोगिताएं, वेबिनार, विशेषज्ञों के साथ संवाद और नुक्कड़ नाटक शामिल है। प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों और सांदीपनी विद्यालयों में आज से 30 जून तक स्कूल चलें अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत शाला प्रारंभोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्री प्राइमरी से 8वीं तक के स्कूलों में बाल सभा का आयोजन होगा। इसके साथ ही शाला में शत प्रतिशत नामांकन, पुस्तक वितरण, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, क्रियाशील बालिका शौचालयों की उपलब्धता, पेयजल की उपलब्धता, अभिभावकों का शाला से जुड़ाव जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नीट राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, इसके लिए सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं। आज मंत्रालय में नीट परीक्षा की तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि परीक्षा आयोजन में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि न रहे। परीक्षा कराने में संलग्न सभी अधिकारी कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। ये परीक्षा प्रदेश के 30 जिलों में 283 परीक्षा केंद्रों में सम्पन्न कराई जाएगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये सत्र 20 जुलाई से 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। 5 दिवसीय सत्र के दौरान सरकार विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, नीतिगत निर्णयों और विकास कार्यों से संबंधित मुद्दों को सदन के पटल पर रख सकती है। वहीं विपक्ष भी प्रदेश में कानून व्यवस्था, किसानों, युवाओं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में रणनीति तैयार करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में साप्ताहिक कृषि समीक्षा बैठक में खरीफ 2026 के लिए देशव्यापी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में अल नीनो की संभावित स्थिति पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम बारिश या वर्षा में असमानता की आशंका है, वहां पहले से पूरी तैयारी की जाए ताकि किसी भी मौसमी चुनौती की स्थिति में किसानों को तुरंत विकल्प, सलाह और सहायता उपलब्ध कराई जा सके। खरीफ 2026 के लिए फसलवार लक्ष्य, बुआई की प्रगति और राज्यवार तैयारियों के समीक्षा करते हुए कपास उत्पादन बढ़ाने पर विशेष चर्चा की गई। साथ ही दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर भी विस्तृत विचार विमर्श हुआ। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम आतंकवाद के खिलाफ सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। सुपर्णा के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का मानना है कि मॉनसून के आने के बाद प्रदेश में बारिश की स्थिति में सुधार होगा। फिलहाल जून माह में प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। प्री मॉनसूनी गतिविधियों के चलते आज भोपाल, ग्वालियर, इंदौर

उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर, शहडोल संभागों के 30 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खजुराहो लोकसभा सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने आज पन्ना जिले के पवई विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। झाबुआ में आज कलेक्टर ने जनसुनवाई से पहले राणापुर में ट्रेंचिंग ग्राउंड और सब्जी मंडी का निरीक्षण किया। राजगढ़ जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ के अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत कुकिंग कॉम्पिटिशन आयोजित किया गया। आगरमालवा में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और ई श्रम कार्ड योजना के प्रचार प्रसार हेतु विशेष शिविर आयोजित किए गए। देवास जिले में 15 अगस्त तक की अवधि में मत्स्य खेत करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। नर्मदापुरम जिले को मखाना उत्पादन के साथ साथ उसकी प्रोसेसिंग का केंद्र बनाने की तैयारी शुरू की गई है। मंदसौर में जिला स्तरीय जन सुनवाई में कलेक्टर ने 120 आवेदकों की समस्याएं सुनकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों मंडलों में जबलपुर रेल मंडल ने ऑरिजिनेटिंग रेवेन्यू अर्जित करने में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। सीहोर में कल 17 जून को राजपूत संगठनों द्वारा महाराणा प्रताप जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सगाई भैया बहनन का रूबी बहन की राम राम। और भैया बहनों कैसे हैं आप सब? और भैया हम तो जो ये उम्मीद कराते हैं कि आप जो सगाई भैया बहन हैं वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुशहाल रहें। और भैया जैसे कि जो मौसम चल रहा है तो बमौसम में जो है आप स्वास्थ्य को ध्यान रखें। देखो भैया अभी जो केंद्र में सरकार है बाकी 12 साल पूरे हो गए हैं। और भैया जिन 12 वर्षन में देशवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनावे के लिए सरकार द्वारा मुलक सी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिको लाभ लेके अपने देश को जो आम जन हैं वो अप जीवन बेहतर हो रहा है, बाकी जीवन स्तर में सुधार भाव है। और भैया ये जो योजनाएं चलाई जा रही हैं इनमें महिलाओं, बच्चों, बेरोजगारों, युवाओं और कमजोर वर्ग, वृद्ध और भैया किसान भैया बहनन के लाने चलाई जा रही हैं, जैसे कि सगे अपने जो देशवासी हैं वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। भैया जिन्हीं योजनाओं में से एक है किसान भैया बहनन के लाने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। भैया जी में कहा है कि अपने जो किसान भैया बहन हैं वे जो है जो किसान सम्मान निधि है वाको लाभ ले सकें। अब भैया जो सम्मान निधि का है कि जामे का है भैया कि जो किसान भैया बहन होते हैं बिनके लाने 2,000 रुपया की 3 किस्तें साल भर में दी जाते हैं, यानी कि 1 साल में 6,000 रुपया बिनके लाने सम्मान राशि के रूप में दौ जात है। और भैया जी से वो कहा है कि जे जो सम्मान राशि है बाको उपयोग वो जो है अपने जो कृषि से जुड़े भाई कार्य हैं या घर में कोनू जरूरत पड़ जाए बाके लाने कर सकत हैं। और भैया देखो का पहले का होता तो कि जब है ना जो छोटे किसान हते सीमंत किसान हते बिन जिनके पास भूमि कम होता थी तो भैया बिन के लाने नकदी की समस्या से जूझना पड़ा था। तो और भैया जब नकदी की समस्या से जूझ जाते तो जैसे बुवाई के टाइम है तो बिन के लाने बीज की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है, तो बासा में परेशानी को सामना करना पड़ा था। तो जब क्या करा था कि कौन

साहूकार से पैसा लेता थे, और भैया जब साहूकार से पैसा लेता थे तो बापे जो है ब्याज भी लगाता, तो भैया जब साहूकार से पैसा लेता थे तो ब्याज इतने हो जाता था, तो कबों कबों के भैया कि वे जो है ब्याज ही पटात रहता थे। और कबों कबों तो आपने देखो होगा, पुराने समय में सुनो भी होगो कि कसु भैयन की तो जो धरती हती वो ऐसे ही चली जाता थी साहूकारन के पास में। तो भैया यही सब समस्या उनको देखत हुआ है। अब जो सरकार है बाने जो योजना चलाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और भैया ये जो जो जो सम्मान राशि की जो किस्तें दी जाते हैं वो ऐसे समय में दी जाते हैं जबकि खेत की जैसे फसलन की बुवाई हो रही है, कटाई हो रही है, या और एक बीच में दई जाते हैं जैसे कि कृषि में जैसे सिंचाई के लिए कोई ज़रूरत है या मजदूरन की ज़रूरत है, तो बास समय पे जो राशि दई जाते हैं। तो भैया जैसे कहा है कि वो साहूकार के चंगुल से बच गया हो आप किसान, और भैया जैसे कहा है कि किसान जो है समय पर वाके पास पैसा आ जाते तो भैया वो अपने समय से बोनी कर देते, और भैया वो जो है अपनी खेती बाड़ी अच्छे से कर सका थे। और भैया देखो ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है बाको लाभ अपने देश के बहुत से किसान भैया बहन ले रहे हैं, जे तो आपने भी देखो ही होगो, आप भी जो है ले रहे होंगे। और भैया पर का है कि कछु भैयान को जो शिकायत है कि हमारी जो है जो किस्तें आते हैं तो कभी उनको भैयान की कहो थे किस्त आत नहीं है। तो भैया जाको सबसे बड़ा कारण है कि बिन्ने जो है आप जो खातो है बैंक में बाकी ई केवाईसी नहीं करवाई हुई है। तो हमारा सगाई भैया बहन से यही कहवो है कि अगर जोन भैयान ने ई केवाईसी नहीं करवाई है तो वो जो है अपने खाता की जो है ई केवाईसी करवा लें, और संगे ही भैया बाय आधार से लिंक करवा लें। और दूसरी बात भैया जो आधार में जोन भी नंबर डलो होए, जो मोबाइल नंबर डलो होए बाको जो है एक्टिव रखें, यानी कि भाई चालू रखें, कैसे कि कोनो भी जानकारी आएगी तो आप जो है जो मैसेज जो संदेश आते हैं वो जो है देख सका थे। और भैया जाके अलावा कहा है कि आप जो है अपने मोबाइल को चालू रखेंगे तो मैसेज पढ़ सकेंगे। संगे ही भैया जो कृषि पोर्टल है, जो किसान सम्मान निधि को जो पोर्टल है, वहाँ पे जाके भी आप जाके जानकारी ले सकते हैं और भैया जय योजना को लाभ ले सकते हैं। तो भैया हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जो हमारी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हुई है, और अब हम अपनी चर्चा को देते हैं इतने ही विराम, और भैया अब हम आपसे बताएंगे खेत बचाओ अभियान पर। तो देखो भैया कहा है कि खेत बचाओ अभियान, भैया जो कहा है कि जैसे जाके जो नाम है बासे ही पतो चल रहा है खेत बचाओ। तो देखो भैया अपो जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, और भैया अपई जो भारतीय अर्थव्यवस्था है बाको एक बहुत बड़ो भाग जो है कृषि से ही आत है। और भैया जब कृषि अच्छी हुई है तो अपने देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है। पर भैया कछु दिनन से ऐसो देखने में आ रहा है कि जो किसान भैया बहन हैं वो ज़्यादा उत्पादन लेवे के लाने मुलक तरह के रासायनिक उर्वरकन को उपयोग कर रहे हैं। जैसे भैया कहा हो रहा है कि अपई जो माटी है बाकी उर्वरा क्षमता घटत जा रही है, और भैया अपई जो माटी है वो प्रदूषित हो रही है, बाको स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो भैया अपई माटी के स्वास्थ्य को सुधारवे के लाने और भैया प्राकृतिक खेती अपनावे के लाने ये जो खेत बचाओ अभियान है वो चलाओ जा रहा है। और भैया ये जो अभियान है वो 1 जून 2026 से लेके 30 जून 2026 तक चलाओ जाए। वो भैया जी मैं कहो वो कि जो भी कृषि अधिकारी हैं तो वे जो है गाँव में जाएंगे, खेतन में देखेंगे कि अब माटी में कौन से उर्वरकों की कमी है, उसी तरह के उते कहीं उर्वरक डालें। और भैया जो किसान भैया बहन हैं इनको जाके प्रति जागरूक करो जाए वो, और भैया देखो किसानों को जागरूक जब बात के लिए भी करो जाओगे कि जो रासायनिक उर्वरक और खाद हैं, कीटनाशक हैं, जो कि हमारी जो धरती है बाय नुकसान पहुंचाते हैं, बिनको जो है उपयोग संतुलित मात्रा में करें, और बिनको उपयोग जो है कम करत भय
प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाएं। और भैया जो जो जैविक और प्राकृतिक खेती है वो जो है क्या है कि अपने जो अपने पास प्राकृतिक संसाधन है बिन पे निर्भर होके होते हैं। और भैया जो खेती है वो पर्यावरण के अनुकूल खेती

होत है। तो भैया जैसे कहोते हैं कि अपई जो माटी है वो भी स्वस्थ रहते और अपा पर्यावरण भी संरक्षित रहते, और संगे ही भैया अपा जो स्वास्थ्य है वो भी जो है अपन भी जो है स्वस्थ रहते हैं। तो अपन जो है अपा जो किसान भैया बहने भी इनको जो ही चाहिए कि प्राकृतिक खेती को अपनाएं और भैया अपनी माटी को प्रदूषित होवे से बचाएं, और जा तरह से भैया अपन जो है अपने खेतन को बचा सकते हैं। यानी कि ये जो अभियान चलाओ जा रहा है बाको उद्देश्य यही है कि अपन जो है प्राकृतिक खेती को अपनाएं और भैया रासायनिक उर्वरकन से जो है दूर रहें। तो भैया अपन जब ऐसा करेंगे तो देख तो कहो कि अपनी माटी को स्वास्थ्य सुधरेगा। और भैया देखो कहों का होते हैं कि जैसे अपन तो कर लेते हैं दूसरे भैया नहीं कराते, तो भैया कहो होते कि एक दूसरे को देख के ऐसे बहुत से काम हैं जो अपन भैया कर लेते हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे जैसे कि आप कर रहे हैं तो अपन जो दूसरे संगी भैया हैं बहन हैं इनको भी जाके बारे में बताएं कि भैया ये प्राकृतिक खेती कितने लाभ की खेती है, जहाँ में लागत भी कम आत है और अपने लाने अच्छा फायदा होते है। और भैया अब हो चलिए चौपाल कार्यक्रम से चलवे की बेला, तो अपई रूबी बहन को देव आज्ञा। राम राम, जय जय।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: क्या कर रहा है?
2: इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहा
2: है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
1: परम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: जय जवान जय किसान।
5: किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी विजय बहन का, मंगू भैया की और
4: रूही बहन की राम राम।
5: और किसान भैया, अपन देख रहे हैं कि इस समय जो है पाव बिल्कुल खाली समय चल रहा है।
4: हाँ भैया,
5: गर्मियन को समय, और गर्मियन के समय में भाई किसान भैया के लाने बिला काम करने रहे थे, जिनके पास पानी नहीं है वे तो कर सकते हैं, है ना। और इनमें ये काम है कि जैसे अपन जो है मेड़बंदी को काम कर सकते हैं, गहरी जुताई कर सकते हैं, खाद अपन
4: तैयार कर सकते हैं, हाँ,
5: है ना। तो वहाँ कहा है कि एक तो ये समय में अनुभव हुआ कि खाद जैसे अच्छे पन डाल दी, और एक आग भी पानी अगर पड़गा उसके बाद दोबारा जुताई कर दे तो पूरी तरह से उसमें जो है
4: मिल जाते, खेत अच्छे से तैयार हो जाते।
5: जो अपन ध्यान रखने, और जैसे अपन साग भाजी खेती कर रहे हैं तो उसमें अपन जो है वर्मी कम्पोस्ट यानी
4: केंचुआ खाद
5: को उपयोग अपन जो है कर सकते हैं। तो जब उपयोग करने से अपने लाना दो फायदा है, तो अपन कहते ना कम लागत में अधिक
4: उत्पादन
5: अपन लेने हैं। तो अपन अगर कम लागत में अधिक उत्पादन ले चाहते हैं तो दो चीजें अपने जरूर अपनाने, जैविक खेती
4: और प्राकृतिक खेती।
5: अब जब जैसे कहते हैं एक बीर गोबर को खाद एक बीर खेत में अगर डाल दें तो
4: तीन साल तक, हाँ। और जो अपन जो रासायनिक डालते हैं वे हर बेर डालने पड़ते हैं हर फसल पे, तो अपनी लागत कम आते है, और दूसरा पाए पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचाते,
5: पैसा भी जाते है, पैदावार लाने ज्यादा नहीं मिलाते, और जमीन सबसे बड़ी बात है जमीन की उर्वरा शक्ति घट रही है, जहाँ जो नुकसान है पहलाने, और जहाँ गाय लागत भी नहीं लगे, पैदावार भी अच्छी होते है ना, और भी अच्छा मिला तो स्वास्थ्य के लाने भी लाभदायक है।
4: स्वास्थ्य के लाने भी
5: ऐसा काम करना है जी।

0: और भैया जो आह्वान तो अपाई प्रधानमंत्री जी ने भी करो है कि जो रासायनिक उर्वरक है बिन पे निर्भरता को कम करा तो है, प्राकृतिक और जैविक खेती को अपना है। तो अपाई किसान भैया बहनों को जो ही चाहिए कि वे जो है प्राकृतिक और जैविक खेती को अपना है। और भैया जा में कहा है कि लागत भी कमाई है और जी से कहा है कि आप पर्यावरण है वो भी संरक्षण सुधारो, वो वहाँ आप खेत की माटी को भी स्वास्थ्य अच्छा रहे वो, है ना भैया। धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे रकबा को बढ़ाते रहे। आ जाएंगे मेड़न पे खेत में पेड़ पौधा लगा सकते हैं।
1: और फलदार पौधा वो औषधीय पौधा लगाएंगे तो ये को लाने ये फायदा है ना अपने लाने लंबे समय के लाने मिलेगा।
0: लंबे समय के लाने अपन के लाने फल मिलेंगे और संगे ही भैया जो अपने खेत की माटी है पे भी नमी बनी रहेगी
1: और अतिरिक्त आमदनी अपने लाने
0: वो तो रहेगी।
1: ऐसे छोटे छोटे काम करके अपनी आमदनी को बढ़ा सका।
0: और भैया देखो अब तो अपने जो बहुत से भैया प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं और कर भी रहे हैं, लाभ भी ले रहे हैं। और भैया देखो आज है मंगलवार और मंगलवार के दिन अपाए कार्यक्रम को एक विशेष क्रम हुआ था किसान मणि गांव में। जी में क्या कर रहे थे कि कोनू ना कोनू गांव में जाके वहाँ पे जो है किसान भैया बहनों से बातचीत कर रहे थे, बाकी स्थल रिकॉर्डिंग कर रहे थे और फिर अपन जो है अपाए भैया बहनों के लाने सुन बात हैं। तो भैया वही क्रम में आज जो है अपन जो बातचीत अपाए भैया के लाने सुन रहे हैं वो जो है 12 साल कृषि में स्वावलंबन पर आधारित है। विशेष जो कार्यक्रम है, विशेष जो बातचीत है जी में ग्राम सेसई सड़क विकासखंड कोलारा जिला शिवपुरी की जो स्थल रिकॉर्डिंग है और जी में भैया बातचीत करी है किसान भैया बहनों से अपने मंगनू भैया ने और जी के प्रस्तुतकर्ता हैं श्री विनोद कुमार त्रिपाठी। तो भैया अपन सब मिलकर सुनाते हैं जी बातचीत।
2: भैया रो अपन आकाशवाणी के माध्यम से किसान भैयान के लाने बिला तरह की जानकारी सुनवाओ थे, शिक्षा की इस बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, खेती किसानी के बारे में, पशुपालन के बारे में। और खेती किसानी में अगर अपन बात करें तो किसान भैयान से कहते हैं कि किसान भैया रो अपन लंबे समय से जो है अपन ने रासायनिक खाद उर्वरकन को उपयोग कर करके अपने अपनी भूमि की उर्वर शक्ति को जो है घटा गई है और अपने चाहिए कि अपन जो है की उर्वरा शक्ति को अपन बनाए रखने हैं तो अपन प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ने हैं, गोबर खाद को उपयोग करने हैं, केंचुए खाद को उपयोग करने हैं जिससे भाई भूमि की उर्वरा शक्ति बरकरार रहेगी और अपने लाने जो है इको लंबे समय तक लाभ मिलेगा, इसे उत्पादन अच्छा मिलेगा। और वैसे भी अपना उद्देश्य यही है कम लागत में अधिक उत्पादन, तो कम लागत में अधिक उत्पादन अपन तभी ले सकते हैं जब अपन ये प्राकृतिक खेती को गोबर की खाद को अगर अपनाएंगे, है ना। ईखों अगर अपना नहीं अपनाएंगे तो अपने लाने जो है अपन देखा ही रहे कि जो अपन रासायनिक खाद उर्वरक को उपयोग कराते हैं वह एक फसल में एक ही बीर होकर रह जाते हैं, लेकिन अगर गोबर की खाद अगर खेत में डालेंगे तो 3 साल में जो है वह काम करेगी। तो जो काम को किसान भैया करना चाहिए, अब गोबर की बात आई तो गोबर के लाने पड़ना चाहिए कि किसान भैया देखो खेती तो कर रहे तो खेती के संग पशुपालन करना चाहिए, पशुपालन कर भी उसे पहले आना है भी दूध घी के अलावा जो है अपन खेती के सालने गोबर मिलेगा जिससे खेती को उत्पादन बढ़ेगा और पशुअन के लाना खेती से जो है चारों पानी मिलेगा तो बाद से जो है पशु पालेंगे जिससे अतिरिक्त आमदनी पाए लाने होगी। तो कहने को मतलब चाहे अपने लाने ऐसे काम को करेंगे तो जिससे अपने जो है कम लागत में अधिक पैदावार होगी। और वैसे भी अपन देख रहे हैं कि भैया अब भाई किसान भैया सबाई को काम खो कर करके पहले जो खेती होती वहाँ में जो है तो कि अपने लाना होते कहीं मिल पाते है ना, आज जो है खेती ऐसी हो रही कि मैं पर्याप्त मिल रहा है, लेकिन भाई जहाँ कमी यही है कि अपन प्राकृतिक खेती की तरफ अपने लाने बढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो आज जो है अपन किसान वाणी गांव में किसान के साथ क्रम के अंतर्गत आ गए हैं ग्राम सेसई सड़क विकासखंड कोलारस जिला शिवपुरी में। तो अपने बिलात किसान भैया ही चौपाल में बैठे हुए हैं तो इनसे अपन तनक देर से बताएंगे, इससे पहले सगे किसान भैया से कहते हैं राम राम।
3: राम राम।
2: सो किसान भैया देखो अपन आ गए हैं भैया इनके बीच में तो अपन बताया तनक देर से इसे सगे किसान भैया से कहते हैं राम राम। सो किसान भैया देखो आप अपनो नाम बताओ।
3: मेरा नाम रामस्वरूप रावत है, मैं ग्राम सेसई का रहने वाला हूँ।
2: की उम्र कितनी हो गई होगी?
3: 62-63
2: 62-63 साल की उम्र हो गई अपनी। और

0: अपन शुरू से ही खेती कर रहे हैं।
1: हाँ,
0: तो अपन जो बताओ कि पहले जो खेती होती वो कैसी होती?
1: पहले ये था कि बैल नौ से खेती होती थी और अपना देसी खाद डालते थे, पशुपालन करते थे।
0: पहले अपन कौन कौन सी खेती करते, कौन कौन से अनाज की खेती होती?
1: पहले हमारी देसी अनाज होते थे, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, पली है, ये होती थी।
0: और तो पहले के किसान की आर्थिक स्थिति, मतलब पैसा देला की स्थिति कैसी रहती?
1: अपना खर्चा अपने सीमित हिसाब से करता था।
0: पहले जो खेती होती वहाँ में साधन अपने पास कम रहते, समय भी ज्यादा लगता, तो और आज की खेती में अपन देख रहे हैं कि साधन अपने पास खेती के बहुत सारे हो गए हैं।
1: हो गए तो उससे ये भी तो खर्चा भी तो बड़ा है, मतलब
0: सही है, लेकिन बात से कहा है कि अपनी पैदावार भी तो बड़ी है। पहले पैदावार कम होती,
1: कम होती,
0: और आज पैदावार अपनी बहुत हो रही है।
1: हो रही है
0: ना। तो जहाँ में अपन देख रहे हैं कि जैसे पहले अपन हरवेल से जोतते तो 3 बीघा जोत पाती, आज अपन ट्रैक्टर हैरो से जोत रहे हैं तो वहां जमीन अभी बिलात जोत रही है। पानी निकार भी की सुविधा नहीं होती नीचे से। पहले अपन रेट से हर से इनसे पानी निकालते नहीं।
1: अब पानी हो गया तो खेती अपन 2 करने लगे, 2 या 3 करने लगे। पहले एक ही खेती होती थी।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं,
1: एक ही फसल।
0: और अपन देखे जैसे अपने प्रधानमंत्री की सरकार चल रही 12 साल से, तो 12 साल में प्रधानमंत्री जी ने अपनी बिलास सारी योजना चलाई, जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंतर्गत कहूत के मिट्टी को परीक्षण कराओ जाते हैं, तो वहां से कहूत मिट्टी परीक्षण से अपन ने कहूँ कराओ
1: मिट्टी परीक्षण करा, जिन लोगों ने उस तत्व उसको प्राप्त हुए हैं कि कौन कौन से तत्व की कमी है, उसकी तत्व की पूर्ति कर दी है,
0: तो बात पैदावार बढ़ रही है,
1: पैदावार बढ़ती है,
0: तो बात किसान अपना आत्मनिर्भर हो रहा हूँ।
1: और क्या
0: है ना, अब जैसे उन्हें चलाई है देखो अपने कुसुम योजना, जो सोलर पंप, तो सोलर पंप अपने किसान के लाने लाभदायक है कि नहीं है?
1: वो तो पूरी तरह से लाभदायक है, क्योंकि अपन आत्मनिर्भर हो जाएंगे उससे।
0: हाँ,
1: और अपन को ऊर्जा अपनी स्वयं की मिल जाएगी।
0: हाँ, बिजली की बचत होगी,
1: बिजली बचत होगी,
0: बिजली हो जाएगी,
1: आत्मनिर्भरता हो जाएगी
0: है ना, और पैदावार भी अच्छी होगी। बात तो जो भाई किसान भाई इनके लाने हैं, अब जैसे ये है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो कृषि सिंचाई योजना में अपन देख रहे कि अपन अब सिंचाई काई से कर रहे हैं,
1: कुछ डीजल पंपों से कर रहे हैं, कुछ कहीं नहरें भी हैं।
0: नहीं, अपन भैया सिंचाई करते हैं तो बरे बना के करते हैं,
1: बराए बना कर
0: या पाइप से करते हैं, लेकिन जो फव्वारा सिंचाई
1: और
0: ड्रिप सिंचाई, तो बात अपने किसान के लाने फायदा भाव को नहीं, वो
1: फायदा पानी की बचत होती है उससे,
0: पानी बचत
1: सिंचाई से और फव्वारा सिंचाई से,
0: हाँ
1: पानी की खराब नहीं होता उस। हाँ,
0: तो ये भी अपने प्रधानमंत्री जी ने अपने लाना चाहिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत, तो जागो भी किसान भैया लाभ लेके आत्मनिर्भर हो रहे हैं।
1: हाँ, हो रहा है ना,
0: है ना। तो अपने किसान भैया के लाने, अब जैसे बात आओ थे अपने किसान सम्मान निधि योजना एक प्रधानमंत्री जी की है, तो वहाँ में अपने किसान के लाने 6,000 रुपया साल के देते हैं।
1: हाँ, देते हैं,
0: तो बात ही अपने किसान के लाने कछु मदद मिलत है?
1: मदद तो मिलती है, वक्त पर वो पैसा आता है, अपन कभी उसको खेती में भी लगाते हैं अपने स्वास्थ्य, तो उसका लाभ लेना चाहिए सबको,
0: सबन का लेना चाहिए। तो अपन जैसे 2,000-6,000 अपने आ गए, तो अपने किसान भैया ने कछु तो फायदा हो तो वहाँ से
1: क्यों नहीं होता?
0: जैसे जुताई कराने हैं गरीब के लाने, तो जुताई भी करा सकते हैं, बीज खरीदने हैं बीज भी खरीद सकते हैं, है ना, बहुत सारे कटाई कराने फसल की 6,000 में कटाई भी हो जाते हैं,
1: बहुत से काम हो जाता है, अपने घर का खर्चा चलता है, बस अपन काम कर लेते हैं और भी,
0: है ना। तो कहने को मतलब जो है कि अपने प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई हैं, जी को लाभ लेके भाई किसान भैया आत्मनिर्भर हो रहे हैं। अब जैसे इनके भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जैसे भाई फसल की पैदावार अपने पास आ गई, अब आए अपने बेचने हैं, अपन जाते ना समिति में बेचे मंडी में, तो बागे लाने अपने समर्थन मूल्य पे अपनी चली जाते हैं,
1: चली जाती है, उस ऊपर का पैसा मिलता है व्यापारी वर्ग के हिसाब से समर्थन मूल्य की।
0: तो वहाँ में कहा है कि व्यापारी से की लूट से जो आप किसान बच जाते हैं,
1: बच जाता है,
0: अपन जाके एक निश्चित कीमत निकाल रहे हैं,
1: निर्धारित जो
0: हाँ
1: कीमत है उसकी मिल जाती
0: है, मिल जाते हैं। तो फसल तो कहने का मतलब जाए ये सब चीज से किसान भैया आत्मनिर्भर हो रहे हैं,
1: हो रहे हैं,
0: है ना। तो 12 साल की जो प्रधानमंत्री जी की जो सरकार है, उनने अपने किसान भाई के नाम बिलात दाव है, और जैसे किसान भैया आत्मनिर्भर हो रहे हैं,
1: आत्मनिर्भर
0: है। और अपन पशु पाल रहे हैं, तो पशुपालन के लाने पर किसान भैया के लाने पशु भी दे जा रहे हैं,
1: दे जा रहे हैं कर्जा, लोन मिल लिया उन पर,
0: हाँ लोन मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये अपन प्राइवेट साहूकारों से बच रहे हैं, सरकार को अपन ले रहे हैं, सरकार को अपन दे रहे हैं, तो जैसे किसान अपनों का है कि आत्मनिर्भर हो रहा है,
1: और
0: कोई से मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है, खेती की पैदावार अच्छी हो रही है, घर परिवार मोड़ा मोड़ी पड़ रहे हैं, कहने का मतलब ये हर तरह से किसान अपना उन्नति कर रहा है।
1: देखो समय पर पैसा को भर देते हैं, तो 0 ब्याज पर भी तो मिल रहा, नहीं
0: मिल रहा ना
1: सोसाइटी पर, तो है उससे क्यों नहीं है, जब 0 ब्याज पर मिल रहा है तो फिर क्या,
0: तो कहवे को मतलब जो है कि अपने किसान भैया के लाने 12 साल में प्रधानमंत्री जी ने बिलात काम करे हैं और ये सबको लाभ लेकर भाई किसान भैया आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो रावत जी आपने भाई किसान भैया के लाने बिलात अच्छी जानकारी दी, ये लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया देखो भाई बीच में अब आ गए हैं दूसरे किसान भैया, तो अपन जानते हैं उनको नाम, तो भैया अपना नाम बताओ।
2: अखे राय रावत।
0: अखे राय जी भाई उम्र कितनी हो गई?
2: कोई हुई 53 के आसपास।
0: 53 साल भाई उम्र हुई। अपा गांव कौन सो है?
2: सीसई
0: सड़क।
2: हाँ सीसई सड़क।
0: तो अपने पास अगर अपन बात करें खेती किसानी की जमीन की, तो अपने पास खेती की जमीन कितनी है?
2: 12.5 बीघा जमीन है अपने पास।
0: 12 बीघा जमीन है और वहाँ में अपने पानी का व्यवस्था है?
2: ट्यूबवेल है।
0: ट्यूबवेल अपने पास लगा हुआ है। तो अपन जो खेती कर रहे हैं, अपनी उम्र इतनी हुई है और अपन जो बताओ जो पहले जो खेती होती वह कैसी होती?
2: पहले ये ही कि अपन घर बैलों से खेती करते तो कमाई हो पाती। अब आजकल सरकार ने साधन चला दिया ट्रैक्टर वगैरह, तो इनसे क्या अपन ने फायदा भी मिल लिया है, जल्दी काम ने बढ़ जाता है।
0: और पहले अपन काय काय खेती करते पहले जो होती इनमें?
2: पहले मक्का और ये तिलहन की खेती में थी करते बस जी।
0: तो पहले का वो तो खेती में ज़्यादा समय लगा, तो
2: अधिक समय लगा तो इतनी पैदावार भी नहीं थी। अब टमाटर वमाटर ये चल गए
0: और अब आधुनिक खेती हो गई है।
2: हाँ।
0: तो आज अपने पास आधुनिक कृषि यंत्र में अपन कृषि यंत्र की बात करें तो खेती के कौन कौन से यंत्र अपने पास हैं जिनसे अपन खेती कर रहे हैं?
2: आजकल तो ट्रैक्टर की सभी व्यवस्था है, ट्रैक्टर से चल रहा है सभी काम।
0: ट्रैक्टर, हैरो।
2: हैरो मेरे सबसे बड़ा की साधन है, पंजा, सीड ड्रिल, कंटीमीटर वगैरह
0: ये सब अपने पास है, है ना? तो जी अपने पास हो गए हैं, तो जहाँ से अपने लाने लाभ भी मिल रहा है?
2: नहीं पूरा लाभ मिल रहा है, जो काम 4 दिन में होता वो 1 दिन में ही हो रहा है।
0: तो जी है ना, तो कहो मतलब यार समय की बचत वही है,
2: समय की बचत वही है,
0: किसान ने उन्नति करी है,
2: उन्नति करी,
0: तरक्की करी है और आत्मनिर्भर बनो है।
2: आत्मनिर्भर बनो है, वो पहले की तरह दबाव में नहीं है अब किसान।
0: हाँ पहले के कहो तो साहूकार से पैसा लेके
2: आते, दूने तीने ब्याज में पैसा मिलता
0: और पूरा पैसा बैंक चला जाता,
2: उसी बैंक में चली जाती, मतलब वही को वही लग रहा था, वही में लग रहा।
0: आज अपनी वो स्थिति नहीं है,
2: वो स्थिति नहीं है आज,
0: है ना?
2: अपनी बाप जी रहा है वो।
0: बिल्कुल सही बात कह रहे हैं।
2: हाँ
0: और अपन जैसे बात करें मिट्टी परीक्षण की, तो अपन जो है मिट्टी परीक्षण अपन कराते हैं?
2: मिट्टी परीक्षण करवाते हैं कभी कभी।
0: तो बाहर से मिट्टी परीक्षण से अपने लाने का लाभ होता है?
2: मिट्टी परीक्षण से यही है कि भूमि की अपन पहचान हो जाती है,
0: तत्व बन के अपन पता पड़ जाते हैं
2: कौन से
0: तत्व कम है, कौन से ज्यादा,
2: कौन से ज्यादा है।
0: तो बाहर से कहो के जो पोषक तत्व की कमी है बाह में अपन देते रहते तो पैदावार अच्छी हो जाती है,
2: पैदावार ज्यादा बढ़ जाती है, वो दवाई मुवाई डालती थी।
0: तो जाके लाने अपने चाहे मृदा स्वास्थ्य कार्ड चला हुआ है वो अपने पास है, है ना? तो जो तो बहुत अच्छी बात है कि अपने कम से कम जो है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड करके मिट्टी की परीक्षण की जांच अपन करवाते रहते हैं। दूसरी बात जो है कि अपने जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो प्रधानमंत्री जी ने चलाई है अंतर्गत अपने पास जैसे ड्रिप सिंचाई है, फव्वारे सिंचाई है, वो अपने पास है?
2: अपने पास तो नहीं है, वो किसानों के पास है जिनने जानकारी है उन्होंने लाभ लिया है उसका।
0: अब जैसे टपक सिंचाई है, टपक सिंचाई में तो अपन भी टमाटर लगाते हैं मामले
2: लगाते हैं,
0: लाभ लेते हैं ना,
2: लेते हैं ड्रॉप।
0: तो बात है कल आप मिलते अपने ड्रॉप,
2: बात ये है कि पानी की बचत होती है और फसल भी अच्छी होती है, घास कूर आसपास नहीं होता, वहीं पर पानी जलता है,
0: तो जैसे पैदावार अच्छी होते है,
2: पैदावार बढ़िया होते है,
0: तो जैसे किसान आत्मनिर्भर बनाते
2: बनो,
0: है ना? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लाभ भी अपने किसान भैया देखो ले रहे हैं और जी को उत्पादन बढ़ा के अपने किसान भैया जो है आत्मनिर्भर हो रहे हैं। अब जैसे अपन बात करें प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना,
2: सम्मान निधि योजना,
0: सम्मान निधि योजना में जैसे अपने साल में 6,000 रुपया
2: मिलते
0: हैं,
2: मिलते
0: ना
2: मिलते,
0: तो जा उन्हें 6,000 रुपये से अपने जो किसान भैया हैं छोटे किसान हैं इनके लाने का लाभ होते जामे?
2: बस बहुत लाभ हो जाता, समय पैसा मिल जाता तो भाई थोड़ी बहुत काम चल ही जाता है, मतलब हाथ कूड़े का, दवाई मुआइन का, बीज को
0: जुताई करवाने,
2: जुताई करवाने, तो भाई कोई से मांगना नहीं पड़ा पैसा, मतलब ये टाइम पर काम चल जाता है।
0: हाँ और अगर वो पैसा ना मिलते तो अपन किसान भैया ब्याज पे लेके आ तो साहूकार से लेके आ तो फिर वहां को दोगुनो तिगुनो जमा कर दो,
2: मतलब लेना ही पड़ता पैसा वो
0: तो बात से कहा है किसान के लाना जो है नुकसान हो रहा हो तो
2: नुकसान पूरा ही हो वो तो दूने के तीन देर पर देने पड़ते हैं।
0: अब जहाँ में कम से कम जो है कि अपने कोई देने नहीं है, उस साल में 6,000 रुपये किसान भैया के लाने मिल रहे हैं,
2: मिल रहे हैं,
0: है ना? एक ड्रोन तकनीक चलाई है प्रधानमंत्री ने, ड्रोन तकनीक को क्या उपयोग है किसान के
2: लिए? जी है कि दवाई भी गिर जाती है और फसल की देखभाल भी हो जाती है,
0: पूरी निगरानी हो जाती है,
2: पूरी निगरानी हो जाती है, बैठे बैठे
0: की है ना, एक जगह बैठे बैठे,
2: एक जगह बैठे बैठे पूरी देख लेते हैं।
0: अच्छा जी अपन देख रहे हैं कि अपन बरसों से रासायनिक खाद को उपयोग कर चले आ रहे हैं, तो रासायनिक खाद से भाई फसल में किसान भैया का क्या नुकसान है?
2: नुकसान तो यही है कि अब
0: नहीं जैसे अपन रासायनिक दवा डाल रहे हैं, रासायनिक खाद को उपयोग कर रहे हैं, तो जैसे कहा है कि भूमि उर्वरा शक्ति जो है भूमि की कम हो रही है, पैदावार कम हो रही है, और जोन में अपन डालते हैं भाई फसल में उपयोग करते हैं और अगली फसल में तो उपयोग करते नहीं है
2: भाई, अगली में नहीं करें।
0: और अगर अपन प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं जैसे गोबर की खाद है, केंचुआ की खाद है, जी अपन खेत में डाल रहे हैं तो जहाँ से का फायदा है?
2: जहाँ से बहुत बड़ा फायदा है मान लो तो।
0: कैसे?

0: बस ये है कि भुरभुरी मट्टी रहती है और अब जो पहले केंचुआ पाए जाती जमीन में वो ये दवा उनसे खत्म हो गए हैं। तो ये अपन खाद गोबर की खाद डाल रहे नहीं तो जहाँ से फसल दूनी काम करती है ये मान लो,
1: तो जहाँ से अपने मतलब रासायनिक खाद से नुकसान है,
0: नुकसान
1: है ना, तो अपने गोबर की खाद को उपयोग करना चाहिए,
0: गोबर की खाद को उपयोग करना चाहिए वो जरूरी है, और
1: है ना जैविक खाद को उपयोग भी करना चाहिए
0: जैविक का।
1: और अपन जैसे रासायनिक दवा का उपयोग करते हैं कीटनाशक में रोग मारवे के लाने, वहां अपन गौमूत्र को उपयोग भी कर सकते हैं, नीम को तेल है, नीम की खली है,
0: हाँ कर सकते नहीं
1: है?
0: नीम का पानी वो सड़ा करके पत्ती को बासी भी काम चलेगा,
1: तो जी अपने लाना फायदा है ना,
0: पैसे बचे होगा,
1: स्वास्थ्य के लाने भी लाभदायक,
0: स्वास्थ्य के लाने लाभदायक है
1: और भाव भी अच्छा मिलेगा,
0: भाव भी अच्छा मिलेगा।
1: तो कभी को मतलब जो है कि अपना ऐसे काम करना चाहिए जी में अपने किसान आत्मनिर्भर बने है ना खेती से, तो जो भैया के लाने करना चाहिए, एक किसान भैया के लाने चलाई है प्रधानमंत्री मानधन योजना, मानधन योजना के बारे में जानकारी है आपको?
0: नहीं, नहीं है जानकारी।
1: तो जहाँ में कहा है कि जैसे 18 साल के मोड़ा मोड़ी उठा 18 से 40 साल तक के जो भी उम्र के भैया बहन है, तो बाबा इनको एक बीमा होते हैं तो वहाँ में अलग अलग राशि, और जब उनकी उम्र 60 साल हो जाएगी तब उनके लाने जो है 3,000 रुपये महीना के मिलेंगे
0: पेंशन
1: के तौर पर, और अपन हैं तब तक अपन मिलेंगे, बाकी बाद अपनी पत्नी के लाने फिर 1,500 रुपये आधे हो जाएंगे। तो जे किसान भैया के लाने कैसी है?
0: किसान भैया का भाई फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है,
1: तो किसान के लाने कराना चाहिए,
0: कराना चाहिए, जरूर कराना चाहिए, और
1: है ना। तो ऐसे किसान भैया के लाने लाभ लेंगे तो अच्छी बात है। प्रधानमंत्री का है कि 12 साल बेमिसाल इस समय चल रहे हैं, 12 साल के प्रधानमंत्री ये हुए हैं, तो ना भाई किसान भैया के लाने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं जी को लाभ लेकर भाई किसान भैया आत्मनिर्भर हो रहे हैं।
0: पहले कोई ऐसी खास योजना नहीं थी, जब से मोदी जी आए बहुत ही योजनाएं चल गई हैं, बस बहुत फायदा भी है किसानों के लिए,
1: आत्मनिर्भर हो रहे हैं,
0: आत्मनिर्भर हैं, लेकिन क्या
1: में नहीं जा रहे,
0: जिनको जानकारी नहीं है वो उसका फायदा नहीं ले पा रहे, जिनको जानकारी वो फुल फायदा ले रहे हैं।
1: तो भाई किसान के लाने अगर पढ़े लिखे हैं जा रहे हैं तो उन्हें जो है लेना चाहिए
0: फायदा, बिल्कुल लेना चाहिए।
1: और अपने जैसे सोलर सिस्टम है, आजकल सोलर सिस्टम चल रहा है, जहाँ में जाको नाम है प्रधानमंत्री कुसुम योजना कहते हैं जाके नाम है
0: सोलर से
1: तो कुसुम योजना के तहत का सोलर लगाए जा रहे हैं, तो सोलर लगावे से किसान भैया के लाने का फायदा है?
0: फायदा यही है कि बिल नहीं भरना पड़ेगा और अपने बस तो बिल्कुल आत्मनिर्भर रहेंगे, न कर्जा होगा फालतू,
1: और बिजली ले जावे को डर नहीं रहेगा,
0: कोई मतलब नहीं जाना तब चला सकते हैं अपन भाई,
1: कि बिजली कराने अपन बैठे बिजली आ गई
0: तो जरूरी नहीं है, बस कोई टन मन का हिसाब नहीं बनता कि 12 घंटे ही आगी कि 8 घंटा आगी, वो तो पर्याप्त रहेगी।
1: तो किसान के लाने जो बहुत ही फायदेमंद है,
0: बहुत फायदेमंद है, सोलर से बहुत फायदा है।
1: तो जहाँ से कहे मतलब जो है कि भाई जो प्रधानमंत्री की जो योजना चली है इनसे किसान आत्मनिर्भर भाव है,
0: आत्मनिर्भर फुल भाव है,
1: तो
0: जिनको जानकारी है वो तो और ज्यादा ही है।
1: तो केवे को मतलब जो है किसान भैया ने को लाभ लाभ है, वो तो सारे किसान भैया के लाने आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, ये के लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भैया देखो अपने पास अगले किसान भैया हैं, तो अपन चले थे इनके पास और जाना थे इनको नाम, तो भैया अपना नाम बताओ।
2: सियाराम।
1: सियाराम जी अपन कौन गाँव के रहने वाले हैं?
2: सीसई
1: सड़क। और अपन जो है अगर बात करें भाई उम्र की, तो भाई उम्र कितनी हो गई?
2: 55 की लगभग हो गई,
1: 55 साल अपनी उम्र हो गई है ना। और अगर बात करें खेती किसानी की जमीन की अपने पास, तो खेती की जमीन कितनी है?
2: 3 बीघा है।
1: 3 बीघा अपने पास जमीन है, तो वहाँ में अपन जैसे बचपन से ही खेती कर रहे हैं?
2: बचपन से
1: खेती कर रहे हैं। तो अब जो बताओ पहले जो अपन अगर बात करें आज से 40 साल पहले या 45 साल पहले की, तो बस समय कैसे खेती होती है, काय की खेती होती?
2: पहले तो हरबेलन की खेती होती साहब, और मक्का फका करते, ज्वार वगैरह करते, मूंगफली करते।
1: तो बामे अपने लाने कितने समय लगा तो ये सब करवे में?
2: बामे तो मतलब समय लग तू जो मालू मोड़ी दूध महीना आना तक तो बाकी अखाई हो गए कर दी।
1: हाँ वो है ना।
2: हाँ।
1: और आज अपन बात करें खेती की, तो आज की खेती कैसी हो गई?
2: अब आज की खेती तो गंडन के काम मेंटन में हो रहे हैं।
1: हाँ, जैसे अपन ट्रैक्टर जुताई कर सकते हैं, तो कई बीघा जोत सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, मन कई बीघा सिंचाई कर सकते हैं पंपन से। पहले का रेट से अपन सिंचाई करे तो 1 बीघा जमीन भीगे में कितने टाइम लगता?
2: पूरे दिन,
1: सौरों दिन लग जाता है। अब 1 बीघा कितने देर में बिक जाते
2: हैं? अब तो ज्यादा 1 घंटा में,
1: 1 घंटा में बिक जाते हैं। खेती में जब गोबर की खाद डाल रहते तो पैदावार अच्छी होती
2: है।
1: अब रासायनिक खाद और उर्वरकन का उपयोग क्यों कर रहे हैं? क्या भाई पैदावार बढ़े
2: और क्या
1: है ना, लेकिन अब रासायनिक खाद उर्वरकों का उपयोग कर करके अब जमीन कैसी हो गई है?
2: अब तो जमीन पूरी बिगड़ गई एकदम से,
1: है ना, पैदावार
2: नहीं हो रही,
1: ऊपर लागत बढ़ गई है,
2: और पूरी जमीन में जहर भर गया साहब। अब तो पहले जी जी जी दवाई हम जानते नहीं है कोई, ये मान लो तुम कहूँ इल्ली की दवाई डालो, कहूँ फलानी डालो, और अब ये खाद नहीं डाल रहे सरकारी, तो खेती नहीं हो रही।
1: पहले लागत कम है थी कि अब लागत कम है?
2: पहले लागत कम है थी।
1: है ना, और शुद्ध मिलतो,
2: शुद्ध खाना मिलतो, शुद्ध चारा मिलतो, सब कुछ शुद्ध मिलतो।
1: अपन देख रहे हैं कि लगभग

0: जी 12 साल के भीतर अब अपन ने कौन कौन से परिवर्तन देखे जी 12 साल जी प्रधानमंत्री जी अपने आए हैं तब से, जैसे देखो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, ड्रोन तकनीक है, नैनो यूरिया है, प्राकृतिक खेती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना है और प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है। तो जी अपनी बिलात योजना ये 12 साल से प्रधानमंत्री ने चलाई है, तो जैसे अपने किसान कल्याण का लाभ हो
1: लाभ बहुत होगा, क्यों नहीं हो लाभ, लाभ मिला होगा।
0: अपन देख रहे हैं कि अपना जो ट्यूबवेल चल रहा है, अब जा पाओ कैसे चल रहा है ट्यूबवेल,
1: लाइट से।
0: अब जाइए अपन अगर सोलर लगवा दें
1: पूरा बिल नहीं देना, 24 घंटा लाइट मिलना है, और वो अपनी निजी चीज हो गई। अब ये तो प्राश थे, अब एक घंटा का चले वो दे दें तो 3 घंटा का काट दें, बैठे रहो
0: वो अपने जरूरत है 3 घंटा में, और नहीं तो फसल सूख रही, फिर क्या करोगे जी, है ना,
1: सूख ही जाता है भाई, जब कई बार फसल ही नष्ट हो जाता है, लाइट ही नहीं मिल रही।
0: किसान कल्याण बिला सब्सिडी है जामे, जैसे 1 लाख रुपया की चीज आ रही है तो अब 60,000 सरकार दे रही, 40 अपने देने हैं, और वह भी अपने किस्तन में देने हैं,
1: वो बढ़िया है,
0: तो वो अपने लाने फायदा है। तो जैसे किसान अपना आत्मनिर्भर बने वो
1: सही है,
0: आगे बढ़े
1: वो
0: तरक्की करे वो,
1: और क्या
0: है ना। अब जिस तरह से अपन बात करें प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की, तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, बाकी अंदर का जो है टपक सिंचाई है, फव्वारा सिंचाई है, तो जैसे भाई किसान के लाने का लाभ है,
1: बाज लाभ जी है कि समय की बचत है, पानी की बचत है,
0: ये बहुत अच्छी है, पानी की बचत है,
1: पानी की बचत है।
0: और नहीं अपन कहा पहले बरे से खेती कराते, बरे से देते ना सिंचाई, तो बरे में कहा तो पानी बिलात बर्बाद हो, तो
1: बोलो बाव घंटा नो तो किए तो मैं पानी पहुंच दू, लंबी दूर बरे पड़ गए तो घंटा नो बरे में चल भी कर दू,
0: तो पानी बेकार जाता हूँ ना,
1: बेकार जाए।
0: और अब फव्वारा से और टपक सिंचाई से जितने का आवश्यकता है फसल के लाने
1: वो उतना पानी समय पे मिलेगा,
0: सही है, पैदावार भी अच्छी होगी,
1: वो
0: तो जैसे पैदावार अच्छी होगी तो वो किसान जो है आत्मनिर्भर बने, वो
1: सही बात है।
0: एक योजना है प्रधानमंत्री जी की, प्रधानमंत्री मानधन योजना, जाके बारे में आपको जानकारी है?
1: नहीं है
0: जय, ऐसी जानकारी है कि जहाँ में अपन जो है 18 साल से 40 साल की उम्र तक एक बीमा की तरह अपन महीना की राशि जमा करेंगे, और जब भाई उम्र क्या साल की हुई 60 साल की, तो 60 साल की उम्र से अपने लाने फिर मिलन लगेंगे 3,000 रुपया, जमा तो कछु नहीं करने, फिर 3,000 रुपया जब तक अपन जियेंगे तब तक अपन मिलेंगे, अपन जिये तब तक अपन मिलेंगे, बाकी बात फिर अपनी पत्नी है 1,500 रुपया महीना वो जियेगी तब तक बाद मिलेंगे। तो जी अपने लाने फायदेमंद है कि नहीं है?
1: फायदेमंद है,
0: तो ये हर किसान भैया के लाने करना चाहिए।
1: अब
0: जैसे अपने पास किसान सम्मान निधि योजना एक प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, तो वहां में अपने लाने साल में 6,000 रुपया सरकार दे रही है,
1: दे रही है,
0: तो बाघो लाभ अपन ले रहे हैं,
1: ले रहे हैं,
0: ले रहे हैं ना,
1: ले रहे हैं।
0: तो वो पैसा पे का काम में आते हैं?
1: अरे वो तो इमरजेंसी में कहीं ना कहीं काम आता ही है, वो तो
0: जैसे कहीं जुताई करवाने हैं,
1: बागी जुताई करवानी है, बीज लानी है, खाद लानी है,
0: फसल की कटाई,
1: फसल की कटानी है, तो वो तो समय पे काम आ ही जाता है। वो
0: तो कभी को मतलब जो है प्रधानमंत्री जी ने अपने जो काम कर रहे हैं वो किसान कल्याण है, ऐसे कर रहे हैं कि जैसे किसान भैया आत्मनिर्भर हो रहे हैं,
1: पूरा लाभ ले रहे हैं
0: और आत्मनिर्भर हो रहे हैं,
1: बिल्कुल निर्भर हो रहे हैं
0: ना,
1: सही बात।
0: और ये बहुत ही अच्छी बात है किसान भैया ने 12 साल में अपने मोदी जी ने जो है अपने किसान भैया ने कल्याण है बिलात दाव है, और जिसे किसान भैया आत्मनिर्भर हो रहे हैं जाको माना तो
1: मानते हैं, बिल्कुल सही ना।
0: तो आपने अपने किसान भैया ने कल्याण बिलात अच्छी जानकारी दी भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भैया देखो आप इसे सही गांव से हो रही है चलवे की वीरा, तो सारे किसान भैया से कहते हैं राम राम
2: राम राम राम राम।
3: भैया अपन सुन रहे थे किसान माणी गांव में किसान के साथ सेवा के 12 साल कृषि में स्वावलंबन पर विशेष कार्यक्रम ग्राम से सही सड़क विकास खंड कोलारा जिला शिवपुरी के स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित आसान एवं प्रस्तुति सहयोग भैया मोहन सिंह यादव को, और प्रस्तुतकर्ता श्री विनोद कुमार त्रिपाठी।
4: और भैया जय के संगे आप जो किसान वाणी कार्यक्रम में बास हो रही चलवे की बेला, तो अपन सगाई भैया बहनन से ले लेते हैं आज्ञा, तो रूबी बहन और
3: मंगरू भैया को आज्ञा दे,
4: राम राम जय जवान जय किसान।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
6: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाया।

आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
1: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अभी आप सुन रहे थे अगले प्रसारण की कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष। आज का विषय है आतंकवाद।
3: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
4: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जन कल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
5: धन्यवाद।
4: भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में, आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
5: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
4: जी,
5: विश्वास और जन कल्याण
4: जी,
5: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जन कल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपए भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा। ये पहली बार हुआ है, वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं 85 रुपया गायब हो जाता है। विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए
4: जी।
5: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो। तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
4: बिल्कुल।
5: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
4: जी,
5: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना, ये भारत के महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है। घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जन कल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बता रहा है।
4: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े

0: पक्षधर हैं, तो आपके मुताबिक भारत में विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
1: विषय ये उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
0: जी।
1: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं, उन्होंने अपने स्पेस से ज्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा
0: जी।
1: और भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
0: जी।
1: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अकाल सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिगकैट अलायंस जैसा विषय हो, तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के उनके हकों की बात करी है। क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर और उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं, उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
0: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो एमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर कि दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पर बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है, आप खुद भी ईवी में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
1: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है। जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है
0: जी।
1: अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस्ट डे रहा है, अखबारों में भी आया है
0: जी।
1: लेकिन जहां पर मनुष्य आधारित गतिविधियां होती हैं, वहां पीएम 2.5 और पीएम 10, ये दो जो तत्व है, मतलब पीएम 2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और पीएम 10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है जिसको एयर पार्टिकल कहते हैं वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो एक्यूआई है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है। व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहां से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में है उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज्यादा मशीनें मंगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है, इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहां के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है। व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।
0: जी, प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती है उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे, अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल, रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना बीपी है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं, नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
0: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
1: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसी टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में केप टाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहां पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की, वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है जिसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं, और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
0: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है, और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें, तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
1: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए जी। और नेचर का ये नियम होता है कि जहाँ प्योरेस्ट नेचर होती है वहाँ पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सरवाइव करते हैं जी। नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है, तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टीमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता, उसका भी हमने वापस से रीइंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टीमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टीमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
0: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया, और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे, और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
1: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है जहां ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है, और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है, और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है, और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहाँ पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है, और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जो अमृत सरोवर, तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नज़दीक है। अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी, जो बड़ी झीलें भी हैं, उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं। और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
0: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
1: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूं कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है
0: जी।
1: और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था, तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था जिसको हम लोगों तक पहुँचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया, और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया। और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहाँ पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं, लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं, लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता, है ना, पक्षियों को छाव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है
0: जी।
1: जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना, लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है पक्षियों के लिए
0: जी।
1: और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है, और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी, और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
0: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
1: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो
0: जी,
1: पानी नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओगे
0: जी?
1: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो, लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है। गेहूं से आटा बनता है, लेकिन वो तो नेचर से आता है। तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा
0: जी।
1: आप एक बात बताइए कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहां से आती है
0: जी।
1: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है
0: जी?
1: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे, कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन
0: जी,
1: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है
0: जी। हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की, तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
1: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है ये नेट जीरो के है
0: जी।
1: जो ग्रीन सिटीज की बात है ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नए एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है तो वो नेट जीरो के लिए है।
0: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट जगत का कितना इंपॉर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
1: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉरपोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉरपोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉरपोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाए, अपनी इंडस्ट्री को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है
0: जी।
1: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए
0: जी।
1: वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी कभी जीवन था।
0: क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
1: पहला तो एक फिर माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पर ज्यादा से ज्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पर अपनाएं। तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
0: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष, इसके अंतर्गत आज आप सुन रहे थे पर्यावरण के क्षेत्र में उपलब्धियां। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनते हैं जावेद अली की आवाज में जोधा अकबर फिल्म का ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और इसे संगीत से सजाया है AR रहमान ने।

0: आतिफ असलम की आवाज में अभी आपने रुस्तम फिल्म का ये गीत सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, कान लगे होते थे दिल लगा होता था, बस आवाज सुन भारत हंसता था रोता था। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण दिखी लेखू दिखा, चित्रहार दिखा महाभारत दिखा, एशियाड दिखा पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा इंसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: कहानी नहीं है, फील नहीं है, विनी और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है, एवरग्रीन भी है, कहानी एवर बीन टोल्ड, जेन जी भी है।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमरीका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियां में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियां में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
3: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
2: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉके ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की पहली जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैंड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सब

0: का विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियॉन में G7 शिखर

भारत और जापान ने पेरिस मुआहिदे की दफा 6.2 के तहत मुश्तरका क्रेडिटिंग मैकेनिज्म JCM पर अमल आवरी के जवाबित को इख्तियार किया है ताकि आबोहवा से मुतालिक कार्रवाई, जहरीली गैसों के अखराज में कमी और पायदार तरक्की की स्कीमों के मुतालिक तआवुन को फरोग दिया जा सके। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली की वजारत के मुताबिक अमल आवरी के जवाबित को क्रेडिटिंग के मुश्तरका मैकेनिज्म के लिए पिछले बरस दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाए तआवुन के मुफाहमत नामे के बाद इस बरस 8 जून को इख्तियार किया गया। ये मैकेनिज्म तख़फीफ के प्रोजेक्टों में शराकत दारी का एक खाका फराहम करता है जिसकी रूह से भारत में जहरीली गैसों के अखराज में तख़फीफ या कतई खत्म किए जाने की बात की गई है, साथ ही पायदार तरक्की के लिए तआवुन की बात भी की गई है। ईरान ने आज कहा है कि अमेरिका के साथ जंग के खात्मे के मुआहदे के तहत इसराइल को लिबनान से बाहर निकलना होगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने कहा कि जनूबी लिबनान में इसराइल की जारी मौजूदगी अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाए मुफाहमत नामे की खिलाफ वर्जी होगी। अमेरिका ने वजाहत नहीं की है कि आया लिबनान कतई मुआहदे का हिस्सा है या नहीं। इधर इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने कल मुआहदे को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फैसला करार दिया था और कहा था कि इसराइल की अपनी तरजीहात हैं और वो जब तक जरूरी होगा उस वक्त तक लिबनान में एक बफर जोन में रहेगा। नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तहान 21 जून को होने वाला है और इससे कब सरकार ने ऑनलाइन मैसेजिंग और सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर इस महीने की 22 तारीख तक बंदिशें आयद की हैं। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। एक बयान में इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने कहा है कि मजकूरा प्लेटफॉर्म को यह हिदायत भी दी गई है कि वो इस महीने की 30 तारीख तक पहले पोस्ट किए गए मैसेज को एडिट करने की सहूलत को गैर फ़ाल बनाए। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने पेशगोई की है कि कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गरज चमक, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने के साथ बारिश का इम्कान है। इसी तरह के मौसमी हालात बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साहिली आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अंडमान निकोबार जजायर में भी रहने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कल ज़ैली, हिमालयाई, मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में शुमाल मशरकी भारत, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के बाद हिस्सों में भी तेज बारिश का इम्कान है। भारत की फेंसिंग एसोसिएशन FAI ने शमशेर जनी की 26वीं सीनियर एशियाई चैंपियनशिप 2026 के लिए भारत की सीनियर टीम का बाकायदा ऐलान कर दिया है। ये चैंपियनशिप 19 से 24 जून तक दिल्ली में मुनक्किद होगी। भारत इस बावकार कॉन्टिनेंटल मुकाबले की पहली मरतबा मेजबानी करेगा जो कि एक तारीफी संगे मील है। 30 से ज्यादा ममालिक और 400 से ज्यादा सरकर्दा खिलाड़ी इस मुकाबले में शिरकत करेंगे। भारत की 24 रुकनी टीम में 12 ख्वातीन और 12 मर्द शामिल हैं जिसकी क्यादत भारत की पहली और वाहिद शमशेर जनी की ओलंपिक खिलाड़ी CA भवानी देवी करेंगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज रात अमरीका के शहर न्यूजर्सी में ग्रुप एक मुकाबले में फ्रांस और सेनेगल के दरमियान मैच होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। आखिर में ब्रिटेन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर एविया में G7 सरबरा इजलास में शिरकत की। वो आज रात कनाडा और बरतानिया के वजराए आजम नीज मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ बाहमी मीटिंग भी करेंगे। वो कल अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। ज़राअत के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मौजूदा खरीफ सीजन के लिए तैयारियों का जायजा लेने की गरज से आला सतह की एक मीटिंग की। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स को जल्द ही नई जिंदगी अता की जाएगी और इस फोर्स में 1000 से ज्यादा गोरखा जवानों को भर्ती किया जाएगा। ईरान ने कहा है

आदाब दोस्तों, उर्दू प्रोग्राम कहकशां को लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त वाजिद खान। इस प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, आबशार गजल प्रोग्राम के तहत आज हम बात करेंगे बहादुर शाह जफर की हयात और शायरी के उनवान पर। सामईन, मुगलिया सल्तनत के आखिरी तख्तनशीन बादशाह बहादुर शाह की विलादत अकबर शाह सानी के जमानाए वली अहदी में 18 शाबान 1189 हिजरी बमुताबिक 14 अक्टूबर 1775 को हफ्ते के रोज गुरूब आफ्ताब के वक्त दिल्ली में हुई। अबू जफर तारीखी नाम था जिसके आदाद 1189 होते हैं। अपने तारीखी नाम अबू जफर की रियायत ही से उन्होंने अपना तखल्लुस जफर रखा था। जफर की तालीम और तरबियत किला मुअल्ला में पूरे एहतमाम के साथ हुई, जहां मुख्तलिफ उलूम व फुनून में उन्होंने महारत हासिल की। बहादुर शाह किले की जिंदगी और वहां के मुख्तलिफ कामों में भी दिलचस्पी लेते थे। किले के दस्तूर के मुताबिक बहादुर शाह जफर की शादी नौ उम्री में ही कर दी गई थी, जिसके सबब वो ताजपोशी के वक्त पोते पोतियों वाले थे। बादशाह बहादुर शाह की बेगमात कितनी थी उनकी तादाद सही मालूम नहीं, लेकिन मुख्तलिफ जराए से ये नाम सामने आते हैं: शराफत महल बेगम, जीनत महल बेगम, ताज महल बेगम, शाह आबादी बेगम, अख्तरी महल बेगम, सरदारी बेगम। इनमें जीनत महल उनकी सबसे ज्यादा चहीती थी। जफर के तकरीबन 16 बेटे और 31 बेटियां थीं, जिनमें से 12 शहजादे 1857 तक जिंदा थे। अंग्रेजों की तरफ से जफर को 1,00,000 रुपए पेंशन मिलती थी, जो उनके शाहाना अखराजात के लिए काफी नहीं थी। साहूकारों के तकाजे उनको फिक्रमंद रखते थे। लाल किले के अंदर चोरियों और गबन के वाकया शुरू हो गए थे। अंग्रेजों ने फैसला कर लिया था कि दिल्ली की बादशाहत खत्म कर दी जाए और शहजादों का वजीफा भी मुकर्रर।

दोस्तों, अभी आप गुलूकार गणेश दत्त जोशी की जादुई आवाज में गजल समाज फरमा रहे थे और कलाम था बहादुर शाह जफर का। सामेन, अंग्रेजों से मुहायदा हो जाने के कुछ ही दिनों बाद 1857 का हंगामा बरपा हो गया, जिसकी कयादत दिल्ली में शहजादा मुगल ने की। अंग्रेजों ने बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली में हंगामा कर रहे बागियों का साथ देने और आजादी की तहरीक की हिमायत करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। 19 मार्च 1858 को अदालत ने बहादुर शाह को उनके तमाम जराइम का कसूरवार ठहराया। 7 अक्टूबर 1858 को साबिक शहंशाह बहादुर शाह जफर ने दिल्ली को हमेशा के लिए खैर

आबाद कह दिया और रंगून में जिला वतनी के दिन गुजारते हुए 7 नवंबर 1862 को सुबह 5 बजे इस दारे फानी को अलविदा कहा। एक शेर में वो कहते हैं, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। बहादुर शाह जफर सिर्फ आखिरी मुगल बादशाह ही नहीं थे, बल्कि वो उर्दू शायरी में दाखली एहसासात, दर्द कुर्ब और तसव्वुफ के एक इंतहाई मोतबर और बुलंद पाया शायर थे। उनकी शायराना अजमत का असल राज उनके लहजे की सच्चाई, बेसाख्तगी और दर्द की वो शिद्दत है जो आज भी पढ़ने वालों की आंखें नम कर देती है। क्योंकि जफर की शायरी महज तखय्युलाती नहीं, बल्कि उनकी अपनी जिंदगी के तल्ख हकायक और बर्रे सगीर की तहजीबी शिकस्त का नूहा है। वो अपने कलाम में दुख, हसरत, बेबसी और महरूमी को इस सादगी और असर आफरीनी के साथ पेश करते हैं कि कारी बराहे रास्त उनके जज्बात से जुड़ जाता है। उनकी गजलों में दाखली एहसासात की गहराई उनको अपने हम असरों में नुमाया करती है। उनका ये शेर उनके दर्द की पहचान बन चुका है। न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक

मंगेशकर, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की मिलीजुली आवाजों में, शब्द रचना अनजान की और संगीत रचना कल्याण जी आनंद जी की।

எல்லாம்.

जाबाज इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाने जा रहे हैं सपना की आवाज में। गीत इंदिवर का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में शराबी फिल्म का गीत। गीत लिखा है अनजान ने और संगीत बप्पी लाहिरी का है।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनवाते हैं, जिसे लिखा है गुलशन बावरा ने, आवाज़ है किशोर कुमार और आशा भोसले की है। फिल्म का नाम है ये वादा रहा।

आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गुलशन बावरा का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे। ये वादा रहा फिल्म से। इसी के साथ फिल्म संगीत अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे रूपाली पांडे का ध्रुपद गायन, राग है जोग।

0: रूपाली पांडे के स्वर में अभी आप सुन रहे थे राग जोग में ध्रुपद गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी भोपाल है।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में तदुपरांत अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के

शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कील स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की पहली जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

5:11 होने को हैं दोस्तों। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी और मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सावन की घटा फिल्म के

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। मैं हूं आपके साथ अर्चना विसारिया, और अब जो गीत आप सुनेंगे उसे गाया है आशा भोसले और दिलराज कौर ने। फिल्म का नाम है